काल मुहूर्त अजूनि सैभं गुरुप्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो

कर शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संग जीओ बिरद बाबा धन गुरु अमरदास जी महाराज उन्हां दा बख्शिश कीता अज दा हुक्मनामा। ये चार पदियां दे चै, चार चरणां दे चै, चार पैरियां दे चै। किसे एक केंद्री ख्याल नूं, किसे एक मरकजी ख्याल नूं बार बार चार पैरियां दे, चार चरणां दे, चार पदियां दे च दोहराया गया। इहदे च प्रथम पंक्ति अक्सर चौपदियां दे च अगर रहाओ ना होवे तो फिर पहली पंक्ति ही सिरलेख है, सिरमौर है, अनुमान है। युग चारे धन जे भवे, इहदे च चार युगां दा मेरे पातशाह ने जिगर कीता है। अर्थ करन तो पहले थोड़ा जिहा मैं इस दा जिक्र कर दें। युग बदल देने समय देच, युग बदल देने शरीर देच, युग बदल देने मन देच। युग दी तब्दीली तीन थावां ते हुंदी है। मन दी दुनिया च युग बदल देने हर युग मानसिक अवस्था है। युग बदल देने तन दी दुनिया देच, तन दी अवस्था है युग। ते युग बदल देने समय देच, वक्त देच, और निर्धारित समय देच युग दी तब्दीली हो जाती है, युग दा पलटा हो जाता है। पहली गल। दूसरी, युग सिर्फ मनुखां दी दुनिया च बदल देने, पशु पक्षियां दी दुनिया च नहीं। युग सिर्फ मनुखां दी दुनिया च बदल देने, कीड़े मकोड़ियां दी दुनिया च नहीं। युग सिर्फ मनुखां दी दुनिया च बदल देने, सूरज चंतारियां दी दुनिया च नहीं। सिर्फ युग दी तब्दीली मनुखी जीवन विच असी देख सकते हैं, बाकी सब कुछ कायनात विच उही चलता रहिंदा है। लखां करोड़ां साल पहले जिहड़ा सूरज सी अज भी होई है, लखां करोड़ां साल पहले जिहड़े तारे सन अज भी होई है, ये धरती भी होई है, ये सागर भी होई है। प्राचीन तो प्राचीन ग्रंथां विच भी गंगा दा जिक्र है, जिहड़ी हजारां लखां साल पहले सी अज भी होई है। इस नूं धन गुरु नानक देव जी महाराज रामकली राग विच इस तरह बयान भी करदे ने, सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तपतर है साधर तीसा पवन जुलारे, जुग जी खेले थां कैसे। ओही सूरज है, ओही चंद्रमा है, ओही तारे ने, ओही धरती है, ओही वगदी होई पवन है। ना पवन बदली है, ना सूरज बदले है, ना चंद्रमा बदले है, ना ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे बदले ने, ना जमीन बदली है। फिर युग दी तब्दीली किस

इसका मूल कारण है मां बाप का जीवन प्रार्थना नहीं बन सकया, वासना ही बनिया रहा। मां बाप का जीवन राममय नहीं हो सकया, सिर्फ काममय होके रह गया। पातशाह कहते ने रन्ना होइयां बोधियां, पुरख होए सयाद, सील संयम सुच भन्नी, खाना खाज अखाज। रन्ना होइयां बोधियां, स्त्रियां बहुत चंचल बहुत चंचल, दिन रात अपने रूप दी प्रदर्शनी करनी और अपने रूप नु देखना, यही उन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य बन गया। भगत कबीर भी कहंदे ने वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए, रूप देख देख नारी। जिथे वेद पढ़दिया पढ़दिया पंडित इसे जी खप गए, उथे अपना रूप वेखदी वेखदी ते विखांदी विखांदी बस नारी इसे जी खप के रह गई। रूप पेख पेख नारी, स्त्री प्रथम अपना रूप वेखदी है पर महसूस कर दी हां हूं ठीक है, फिर विखाण ले निकल दी है। रूप दी प्रदर्शनी, शरीर दी प्रदर्शनी, और यही चाव यही शौक वद्दा जाए तो जिस्म तो कपड़ा हटदा जाएगा। मनुख एक सभ्य मनुख सोच भी नहीं सकता कि स्त्री अर्ध नगन होके भी घूम सकती है बाजारां दे, और नगन होके भी नच सकती है थिएटरां दे। हां वासना चरम सीमा ते पहुंची हुई होवे, रूप नु वेखना ते विखाणा यही जिंदगी दा लक्ष्य होवे तो फिर शरीर तो कपड़ा हटदा जाएगा हटदा जाएगा हटदा जाएगा, अर्ध नगन और फिर अल्फ नगन, इस तरह उसकी प्रदर्शनी होवेगी। पुरख होए सयाद, सयाद शब्द फारसी दा है, इदे अर्थ ने शिकारी, पुरुष शिकारी है, इसे शिकार दी तलाश च है, इसकी खोज यही है। कोई नगन शरीर देखण न मिले, नहीं मिल सकया, इतने पैसे नहीं कि थिएटर दिस जाके किसी नगन स्त्री दे नृत्य नु वेखे, और अजे इतनी धनाडा दी महफिल भी इसनु नसीब ना होवे जिथे अर्ध नगन शरीर आम ने, तो फिर अर्ध नगन शरीर जो फिल्मां दिच ने तस्वीरां दिच ने मूर्तियां दिच ने ओ वेखो। यही कारण है कि नंगियां तस्वीरां खूब बिक रही ने, फैश नावल जिनसियात नाल भरिया हुई कहानियां और जिनसी तस्वीरां नाल भरे हुए मैगजीन खूब बिक रहे हैं, खूब पढ़े जा रहे हैं, खूब पढ़ाए जा रहे हैं। मनुख मानो बीमार होके रह गया है, वासना दा बीमार, और इसने सहजे सहजे हर माहौल नू दूषित कीता है। इस वासना नू प्रार्थना किवें बनाइए? प्रार्थना तो मिलेगा सदीवी सुख, वासना तो मिलता है बिल्कुल मामूली सुख। निमक काम स्वाद कारण पानी, कोट जन्म दुख पावे कोट दिनस दुख पावे। महाराज इस श्लोक दे च भी कहंदे ने अल्प सुख अवित चंचल, ऊंच नीच समावणे, बहुत थोड़ा जिहा सुख और तुम ऐसा चंचल कर देना है, चाहे कोई महान मनुख है ते चाहे कोई तुच्छ, इसे ही अल्प सुख दे फस के रह जांदा है। बचाओ धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ढंग दसते ने तब भय बमन

इसलिए भय तो डर दे होया। गुरु दी संगत पकड़ी, प्रभु दी ओट पकड़ी, नारायण दा आसरा लिया। बस नारायण दा आसरा, गुरु दी संगत, यही ओट है, यही आधार है।

आन कर धर्म वधे नित रसना ते प्रभु दा नाम ले आइए उस सच नू सत नू रटन करिए उस विच मन जोड़िए धर्म पैदा हो जाता है। धर्म दा बूटा अंकुरित हो जाता है और परोपकार कीते हैं दान पुन कीते हैं धर्म दा ए बूटा सहजे सहजे वधदा है उठदा है। स्थित धर्म खिमा के संगा धर्म दा बूटा क्षमा दे आसरे दे टिकया रहिंदा है। कोमल बूटे गिर ना जान ढह ना जान तूफानी हवावां उना दियां जड़ां ना पुट देन तो सहारा देना पैंदा है कोमल बूटियां नूं किसे सोटी दा किसे दीवार दा। तो क्षमा दी सोटी नाल क्षमा दे सहारे खिमा दे सहारे ए धर्म दा बूटा रोज रोज वधदा है उच्चा हुंदा है उच्चा हुंदा है। स्थित धर्म खिमा के संगा धर्म क्रोध कर होत विभंगा छिन मात्र क्रोध कर दिया धर्म दा बूटा जल के खाक हो जाता है। क्रोध ऐसी अगन पता नहीं कितने दिनों की तपस्या नूं जला के रख दें दी कितने दिनों की साधना कितने दिनों का परोपकार। वाकई अगर एक बूटा छह महीने साल सिंच के वड्डा कीता है बस एक चिंगारी उसनु भस्म कर सकती है। क्रोध दी छणक अगन छोटी जी अग्नि कीते किताए पैदा होए धर्म नु नष्ट करके रख देंदी। क्रोध वास्तविक मूर्खता दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। क्रोधी स्याणा नहीं हो सकता। क्रोध बारे कुछ होर जानकारियां इस तरह दिया ने। जर्मन दी गल है एक मां बच्चा ले आई है डॉक्टर को मुर्दा रोंदी हुई चीखदी हुई। डॉक्टर भी हैरान है जब मर ही चुके है ते मेरे को ल्याण दा मतलब जद खत्म ही हो गया है फिर ये रोंदी हुई इत्थे क्यों ले आई है। डॉक्टर कहिंदा ये ते मुर्दा है रोंदी हुई बिलखदी हुई ममता दी मारी मांग कह रही है। हां मर गया ये ते ठीक है पर मैं इस वास्ते ले आई है क्यों मरया है किवें मरया है मैनू कुछ कारण नहीं दिखाई देंदा। अच्छा तो इस वास्ते ले आई है। डॉक्टर उस बच्चे नू वेखदा है अपनी सियाणप नाल जांच पड़ताल करदा है मां नू पुछदा है ए दस किवें गुजरिया कदों गुजरिया। बस मेरी गोद देसी मेरा दूध पींदियां ही पींदियां ए सिर सुट बैठा है खत्म हो गया। तो मतलब होया तेरा दूध पींदियां पींदियां मर गया। क्या दसेंगी जिस वक्त तू इस बच्चे नू दूध पिला रही सी तेरी मनोदशा की सी तेरी मानसिक हालत की सी। ये मां कहती है मेरा ते पति नाल झगड़ा चल रहा सी बहुत उच्ची बोलचाल चल रही सी ये बच्चा विचकार रोन लग पया मैं इसनु दूध पिलाण लग पई
पर गाली गलौज साड़ी चल रही सी। मैं क्रोध नाल उबली हुई सी। तो डॉक्टर ने कहा, ऐ बीवी, तू इस बच्चे नु दूध नहीं पिलाया, जहर पिलाया है। जब तू क्रोध नाल उबली, क्रोध करके तेरिया शरीर दिया ग्रंथियां ने जहर उबलनी शुरू की थी। उना गंडा चो जहर निकली, वो खून विच पिवस्त हुई, वो दूध विच लीन हुई। तो बच्चे नु जहरीला दूध पिलाया, तेरे क्रोध करके जहरीला हो गया तेरा दूध। इसका मतलब है क्रोध जहर है और सारे शरीर नु जहरीला कर देंदा है, पर इस तो उल्ट भी हो सकता है। अगर शरीर जहर नाल भर सकता है, खून जहरीला हो सकता है, तो खून अमृतमय हो सकता है, शरीर अमृतमय हो सकता है। परम भगत श्री नामदेव जी महाराज का फरमान, दस बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिटना सत्तर दोए भरे अमृत सरे।

हे क्रोध तेरा वासा हुंदा है विषयी मनुखां दे अंदर जिन्हां दी वासना अतृप्त रह गई है जिन्हां दी कामना अतृप्त रह गई है जिन्हां दी तृष्णा अतृप्त रह गई है जिन्हां दीआं इच्छावां अतृप्त रह गईआं ने जिन्हां दीआं कामनावां अतृप्त रह गईआं ने तेरा वासा उत्थे ही आउंदा है। अतृप्त वासना क्रोध बनदी है, अतृप्त वासना गिले बनदी है, अतृप्त वासना शिकवे बनदी है, अतृप्त वासना असंतुष्टि नूं जन्म देंदी है और ये सब कुछ फिर क्रोध नूं बर्बाद करदा है। ये क्रोध तेरा वासा है विषयी जीवां दे अंदर। नरतं करोत जथा मरकटे, तू जिस दे अंदर वासा करदा है उसनू इस तरह नचांदा है जिवें मदारी बंदर नू नचांदा है। ऐ क्रोध तू बंदर दी तरह उस मनुख नू नचांदा है जिस दे अंदर तू प्रवेश कर जांदा है। अनेक सासन ताड़न्ते जमदूते तव संगे अधमं नरे। जिस दे अंदर तेरा वासा हो जांदा है उसनू जमजूतां दी ताड़ना सारनी पैंदी है, बार बार जमना पैंदा है, मरना पैंदा है। हे क्रोध तव संगे अधमं नरे, अधम गति दे लोग तेरे नाल आउंदे ने, अधम मनुख नीच मनुख तेरे नाल आउंदे ने। क्रोधी महान नहीं हो सकदा, क्रोधी महानीच है, महानीच है। तो फिर इस तों बचाओ किस तरह करिए, इस क्रोध तो किवें बचिए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ए महान वाक सानू इंज उपदेश करदा है। आखरी पंक्ति

है लोभ, हे लोभ, तैनु मित्र दिवी शर्म नहीं, तो मित्र नाल भी ठगी कर दें। तेनु इष्ट तो भी संकोच नहीं, तो इष्ट नाल भी ठगी कर दें। तू संबंधियां तो भी शर्म नहीं खांदा, तो उना नाल भी ठग गया कर दें, उना नु भी धोखा देना है। नच मात पिता तव लज्जया, तेनु मां बाप दी भी लज्जा नहीं, तू ते उना नाल भी ठगी करदा है, तू ते उना नाल भी धोखा करदा है। पातशाह दा फरमान, लोभी का वेसाना कीजे जे का पार वसाए। लोभी ते भरोसा औखा है, और आज दे युग देच चूंकि लोभ प्रबल है, प्रधान है, भरोसा उड़दा जा रहा है, उड़ गया है, या किधरे कोई भरोसा करदा है, विश्वासघात होंदा है, उस दे भरोसे नो बहुत वड्डी सट लगदी है। लोभी नो मेरे पादशाह ने कुत्ते नाल कूकर नाल तशबीह दिती है।

भख अभख सब खाए। लोभी ते कुत्ते दी तरह है, हर थां ते मुंह मारना, हर वक्त मुंह मारना, क्रंग दे च मुंह मारना, हड्डी दे जो है मुंह मारना, और दूजे ने मुंह मारना देना, दूजे ते भौंकना, ये लोभी दी मनोबिरती है। इसका एक सुंदर चित्रण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री राग दे एक शब्द दे च बड़े सुंदर ढंग नाल कीता है। एक स्वान दोए स्वानी नाल भल

हे कृतार्थ, धाणक हो गया। धाणक जो शमशान घाट पिच बैठ के उड़ीक कर देने कदों कोई लाश आवे, कफन मिले, भांडे मिलन, पैसे मिलन, कदों कोई लाश आवे, साड़ियां लकड़ियां बिकन, कदों लाश आवे, सानू मेहनताना मिले, साजो समिग्री मिले, जिसदी उपजीविका, जिसदी रोजी, जिसदी उड़ीक किसी दी मौत ते खड़ी है, और जो सवेरे तो लेके शाम तक, रात तक इसे उड़ीक च रवे, कोई मुर्दा आवे, कोई मुर्दा आवे, कोई मुर्दा आवे, ऐसे मनुख दी रूह भी मुर्दा हो जाती है, ऐसे मनुख दा इखलाक भी मुर्दा हो जाता है, ऐसे मनुख दा आचरण भी मुर्दा हो जाता है। शेख सादी ने एक बड़ी सुंदर कविता, शायरी गुलिस्तान विच कीती है। फरमान है उना दा, गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त, मैथो इंसाफ दी गल पुछो, बद बख्त कौन है, बद किस्मत कौन है, कि दर राह तश रंज दी गर कस अस्त, जिस दी राहत दूजियां दी रंज ते खड़ी है, जिस दियां खुशियां दूजियां दे रोने ते खड़ियां ने, जो दूजियां दी बर्बादी विचों आबादी लभदा है, जो दूजियां दी मौत विचों जिंदगी लभदा है, जो दूजियां दे नुकसान विचों नफा लभदा है, जो दूजियां दी बेइज्जती विचों इज्जत लभदा है, जो दूजियां दे रोने विचों हासे लभदा है, इह ते बड़ा बदबख्त, बड़ा बदबख्त। सारा दिन ए उड़ीक होवे, ए सोचनी होवे, मरे किसे घर विच कोई मनुख, मौत होवे किसे दी, खत्म होवे कोई, लाश आवे, मैनू कपड़े मिलन, मैनू साजो समिकरी मिले, मैनू धन मिले, इस तरह दी सोचनी इखलाक दा पतन कर देंदी है। ठीक है, अगर ए पेशा है, धंधा है किसे दा, पर सोचनी विच ना ले आवे, उपजीविका प्रभु ते सुटे, सेवा दे रूप विच करे, सोचे परमात्मा दी तरफों यही मेरी ड्यूटी लगी है, तो ये सारी सेवा करदे होया उहदी उपजीविका ते चलेगी, पर उसका इखलाकी पतन नहीं आवेगा, उहदी मनोबिरति थल्ले नहीं जाएगी। पर ओही सिर्फ धाणक नहीं जो शमशान घाट विच बैठ के सारा दिन मुर्दियां दी उड़ीक करदा है, ते किसे घर विच मौत होवे इसकी उड़ीक करदा है, नहीं, सारा संसार ही लोभियां ने शमशान घाट बना के रख दिता है, और खुद बैठा है धाणक दी तरह, कोई मरे मैनू कुछ मिले, कोई तबाह होवे मैनू कुछ मिले, मैनू कुछ मिलना चाहिदा है, हुंदा है दूजा तबाह ते होवे, मेरे पल्ले कुछ पैना चाहिदा है, खोया जांदा सब दा ते खोया जान दो। इस तरह हर मनुख धाणक बन गया, और हर मनुख ने संसार नू शमशान घाट बना के रख दिता। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसनू इस ढंग नाल भी बयान किया है, एक स्वान दोए स्वानी नाल, भलके भौंके सदा बयान। एक कुत्ता, दो कुतियां, मनुख जैसे सवेरे उठता है, इहदे नाल उठ बैठदियां ने,
ਭੌਂਕਦਾ ਏ ਕੁੱਤਾ, ਭੌਂਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁੱਤੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਉੱਠ ਬੈਠਾ, ਕੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਉੱਠ ਬੈਠੀਆਂ, ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਭੌਂਕਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਭੌਂਕਣ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਜਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇ, ਰਾਮ ਨਿਕਲੇ, ਅੱਲਾ ਨਿਕਲੇ, ਮਜਾਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਲਵੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਕੁੱਤਾ? ਲੋਭ। ਕੌਣ ਨੇ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ? ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਭ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਆਸਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਭੌਂਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੋਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੌਂਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੌਂਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਲੋਭ ਐਸਾ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਭੌਂਕਣ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਕੂੜ ਛੋਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਝੂਠ ਦੇ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਮੁਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਦਾਰ ਔਰ ਝੂਠ ਦਾ ਛੁਰਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੁਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ,

फिर हमाता भरे जामुरदार न खाए। भराया हक बस यही मुरदार है। अगर हिंदू है तो गऊ खा रहा है और मुर्दा गऊ, मुस्लिम है तो सुअर खा रहा है मुर्दा सुअर, मरिया होया सुअर। पराया हक इतने सुअर खा रहा है मुसलमान, इतने गऊ खा रहा है हिंदू। भारत दी मनाहत कि गऊ सब तो उत्तम है, ये मनुखी मां की तरह सोचती है। इसका गर्भकाल का समा भी मनुखी मां की तरह 10 महीने का है। जैसे डार्विन ने किस वक्त कहा कि मनुख की आखिरी कड़ी बंदर है, बंदर तो विकास करके मनुख इस शक्ल दे आया है। शरीर की खोज है, विज्ञान की खोज, बाहर की खोज है, पर भारत का ऋषि मन की खोज दे संलग्न है। उदी दिलचस्पी मन की खोज दे है। उन्हें देखिया मनुख का मन ते गऊ का मन बड़े निकटवर्ती ने। जैसे डार्विन ने देखिया बंदर का शरीर ते मनुख का शरीर बड़ा मेल खांदा है, भारत दे ऋषि ने देखिया गऊ दा मन ते मनुख दा मन बड़े निकटवर्ती ने। हो ना होवे मनुख दी आखरी कड़ी गऊ है, गऊ मरिए तो फिर मनुख बनिए। इस तरह मनुखी जिंदगी दी आखरी कड़ी गऊ हो सकती है, बकोले डार्विन बंदर हो सकती है। अफजल हो गई गऊ, महान हो गई गऊ भारत दे चिंतन देच, देशवासियों दे चिंतन देच, क्योंकि मनुख दी तरह सोचती है, मनुख दी तरह ममता रखती है, मनुख दी तरह दुख सुख महसूस करती है। इसनु मारना ऐसा है जैसे मनुख नु मारना, और इसका मांस खाना ऐसा है जैसे बंदे का मांस खाना। त्रिगत जून है, सुअर बिष्टा खांदा है, गंदगी खांदा है। तो इस्लाम दीवानी मोहम्मद साहब ने हराम करार देता नहीं खाना, ये सुअर नहीं खाना। कि दिन भर बिष्टा खांदा है, गंदगी खांदा है, और फिर इसकी गर्दन की हड्डी इतनी मजबूत इतनी सख्त, ये हलाल नहीं हो सकता, जबा नहीं हो सकता। बहुत तड़पेगा, बहुत तड़पेगा, खाना हराम। पर महाराज कह रहे ने खा रहा है वो सुअर, अगर वो मुसलमान है खा रहा है वो सुअर, अगर वो बेगाना हक खा रहा है, अगर भारत का वासी है हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख है, पराया हक खा रहे है, गौ खा रहे है। धन गुरु नानक देव जी महाराज देवाक, हक पराया नानका उस सुवर उस गाय, गुरु पीर हमाता भरे जामुरदार न खाए। पर जब लोभ कुत्ता भौंकदा है, आशा ते तृष्णा दो कुतियां भौंकदियां ने, इस भौंकण विच मनुख ऐसा निढाल आउंदा है, बेहाल आउंदा है, कूड़ छुरा मुठा मुर्दा, भलके भौंके सदा बेहाल। ये आसा तृष्णा भौंकदियां ने, बेहाल कर देंदियां ने। ये लोभ कुत्ता भौंकदा है, निढाल करके रख देंदा है। एक स्वान दोए स्वानी नाल, भलके भौंके
सदाबैल कूड़ छुरा मुठा मुरधार ताणक रूप रहा करतार। फिर ये बेहाल होया मनुख झूठ बोल के प्राय हक नू अपना साबित करने की कोशिश करता है, मेरा है, झूठ बोलता है जब उसका नहीं है। इस जमीन मेरी है जबकि उसकी नहीं है, ये घर मेरा है जबकि उसका नहीं है, ये धन मेरा है, ये संपदा मेरी है, ये मलकियत मेरी है। इस तरह दूजिया का खून है, दूजिया की चीज देते वस्तु देते अपनी मोर लांदा है। बेहाल होया ते बेहाल कीता है लोभ ने, बेहाल कीता है आसा ते तृष्णा ने। इस वास्ते मेरे पातशाह कहंदे ने लोभी दा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि लोभी पापी होंदा है। लोभी तो हर वक्त खतरा है, धन नू संपदा नू जमीन जायदाद नू। और चूंकि व्यापक पद्धर ते लोभ प्रधान हो गया है, हलकत लोभी हो गई है, तो एक दूजे तो खतरे बढ़ गए ने, छीना झपटियां बढ़ गई ने। लोभ प्रधान धन। गुरु नानक देव जी महाराज ने ते बड़ा सुंदर आसा दीवार देच भी फरमान किया है, जैसे राजनैतिक दुनिया देच क्रांतियां आउंदियां ने, राज पाठ ते बदलदे आ, नीतियां बदलदियां ने, विधान बदलदे ने, कई दफा करंसी बदलदी है, धन दा प्रचलन बदलदा है, रूप रंग बदलदा है। बाहर दा ए पलटा राज पलटे नाल होंदा है, लेकिन मनुख ते अंतिशकरण दी दुनिया है, मन दी दुनिया है। उस दे उते अगर अहंकार राज करे तो नीति देच व्यवहार देच जुलम बर्पा हो जाता है। अहंकार दा मतलब मैं हां तू नहीं है, अहं। अहंकारी किसे नू भी बराबरी नहीं देगा, अहंकारी हर एक नू पैरां दे थले रखेगा। तो जो पैरां दे थले आण नूं राजी नहीं, उसकी गर्दन कुचली जाएगी, लिताड़ी जाएगी, आखिर पैरां दे थले लियांदी जाएगी। और जब बहुगिणती दे च मनुखता अहंकारी हो जाए, जोरावर हो जाए, तो कमजोर दा सिर शक्तिशाली दे पैरां दे थले हुंदा है, अहंकारी दे पैरां दे थले हुंदा है। चारों पासे जुलम छा जांदा है। ऐसे दौर कई दफा लंघे ने, जद सदा हंकारियां कोल ते हंकारी दा पैर गरीबां मजलूमां कमजोरां दे सिर ते उड़ाईयां गई गर्दना, लिताड़ियां गई गर्दना। जद मन दी सेजा दुते काम दा राज होवे, वासना दा राज हो गए, और बहुगिणती दिच मनुखता इस तरह दी हो जाए, तो दुराचार आम हो जाता है, सरे आम हो जाता है। किसी मुल्क दिच अहंकार प्रधान होवेगा, जुलम ही जुलम होवेगा। किसी मुल्क दिच वासना एकाम प्रधान होवेगा, तो दुराचार आम होवेगा सड़कां ते, और सरेआम बाग बगीचियां। किसे वक्त भारत देच काम प्रधान मनुखता हो गई सी, रहिंदे थे पंजे विषय मनुख दे कोल हर वक्त ने, पर एक हर वक्त प्रधान होंदा है, वो कोई भी हो सकता है, अहंकार हो सकता है, लोभ हो सकता है, काम हो सकता है। और जब काम प्रधान मनुखता हो जाती है तो बाजारां च दुराचार और दुराचार दे बाजार, परिवार विच दुराचार, उत्थे भी कोई शर्म हया नहीं रह जाएगी। और धार्मिक
ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਾਚਾਰ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਨਾਰਕ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ, ਖਜੁਰਾਹੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਦਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਨਗਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਔਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ ਕੋਨਾਰਕ ਖਜੁਰਾਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰੇਆਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੀ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰ ਹੀ ਕਾਮ ਦੇ ਬਣੇ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਜਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਛਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਐਸੀ ਐਸੀ ਕ੍ਰੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਲੋਭ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਾਪ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। ਬਕੌਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਭ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮੈਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ, ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ, ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ।

कूड़, लोड़ भी नहीं तो देखे मनुख झूठ बोल रहे हैं, कूड़ बोल रहे हैं। और व्यापक पद्धर पे झूठ, झूठी राजनीति, झूठे परिवारक बोल और झूठ से ही खड़े हो गए धार्मिक बोल। सच दी कोई पहचान नहीं, संत कहलाण दा शौक है। मन कदी प्रभु विच लीन नहीं होया, लेकिन माला दो दो गल विच, दो दो हथ विच प्रदर्शनी, नुमाइश झूठ। धर्म दी दुनिया दे झूठ, राजनीति दे झूठ, परिवारिक दुनिया दे झूठ, ये चौधरी है। काम नेब सद पुछिए, जद कदी लोभ नू लोड़ पै जाए, पाप दुबदा विच पै जाए, कूड़ चौधरी किधरे कमजोर होण लग पै, ता काम ने सद पुछिए, इस नायब काम नू कामना नू बुला लिया जांदा है। बह बह करे विचार, लोभ विचार करदा है पाप नाल, कूड़ नाल, काम नाल। और काम ऐसी विचार दे देंदा है, लोभ भड़क उठता है। झूठ मदद करदा है, पाप अंग संग हो जांदा है। अंधी रैयते ज्ञान विहूणी, भाए भरे मुर्दार, अज्ञानता दा अंधकार है, मनुख नु कुछ भी नहीं पता कौन मेरे ते राज कर रहे है, और लोभ मुर्दार खान ते मजबूर कर रहे है। लोभी दी तर्ज जिंदगी इस तरह है, गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, अकरण करोत अखादं खादं असाजं साज समझ्या। लोभी ओ कुछ करदा है जो नहीं करना चाहिदा, ओ खांदा है जो नहीं खाना चाहिदा, और लोभी दा सारा साजो समान मलीन है।

राजित सूर संग्राम अत बल नाम बहुमर्दने गण गंधर्वे देव मानुखं पशुपंखी विमोहने हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वरे ज्ञान दे अथा सागर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिस विच परमात्मा दे गुण ते उस दियां शक्तियां दा बड़े सोहने ढंग नाल वर्णन है लेकिन नाल नाल मनुख दियां कमजोरियां मनुख दे अवगुण इन्हां दा भी निखेड़ा कीता गया है ताकि मनुख नूं अपनियां कमजोरियां दा पता चल सके। आखिर ऐसा की है जिस करके परमात्मा नहीं मिल रहा? वो गुणा दा सागर है, मनुख औगुणा दा सागर है। परमात्मा दे गुण नहीं गिने जांदे, मनुख दे औगुण भी गिनने औखे ही ने। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगुण हमारे। उंज ते अनंत

अत बलना बहु मर्दने। हे अजित, हे संग्राम दे सूरमे, हे अति बल रखण वाले, तू बड़िया बड़िया नू मर्दन करके रख दिता है, मल के रख दिता है। कीड़िया कीड़िया नू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गिनती करते हैं। गण गंधर्व देव मानखं पस पंखी विमोहने। बड़े बड़े गण गंधर्व चोटी दे संगीतकार, चोटी दे दार्शनिक फिलोसफर विचारक देवते मानुख चंगे चंगे मनुख स्याणे मनुख गण गंधर्व देव मानुखं पस पंखी विमोहने। फिर ऐ मो तेरी लपेट दे पशु भी आ गए, पंछी भी आ गए, मानो सारा जगत समूह ब्रह्मंड ऐ मो तू अपनी गिरफ्त च लै लिया, तू अपनी पकड़ च लै लिया। बंदरी अपने मरे हुए बच्चे नू भी सीने नाल लाई फिरती है। सियाने कहंदे ने चीथड़ा चीथड़ा हो जाए, हड्डियां का ढांचा हो जाए, चूरा चूरा करके गिरन लग पे, तावी बंदरी बच्चे नू छोड़दी नहीं, सुटदी नहीं। जिन्ने चिर तक उसकी दोबारा कुखारी नहीं आउंदी, बच्चा नहीं आउंदा, नहीं छोड़दी। इतना मो, इतना प्रबल मो, मेरा है, मेरा है। तो सिर्फ मनुख ही नहीं पशु पक्षी, सिर्फ मनुख ही नहीं दिव्य शक्ति रखने वाले देवते, बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर गण गंधर्व संगीतकार सारे इसकी लपेट दे चुके हैं, सारिया का मर्दन करके रख दिता है। बचाओ किस तरह करिए। फिर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस श्लोक की अखीरली पंक्ति इंज फरमान कर देने,

ਕਰਨ ਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕਿ ਮੋਹ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ। ਹਰ ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਮਸਕਾਰਮ, ਸਜਦਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਔਰ ਆਖ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ। ਬਚਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੀ ਬਦਬੋ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਮਹਿਕ। ਮੋਹ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਮੋਹ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਦਇਆ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਇਆ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਆਪਣਾ ਕਰੋੜ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਸੀਮਤ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਬਲੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ, ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਜਨਾਬ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਅਕਬਰ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਦਰਾਂ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਘਰ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਸਲੀਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਗ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਖਿਡਾਉਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਲੀਮ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁੱਕਦਾ ਚੁੰਮਦਾ ਰੱਖਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਖੁਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲੀਮ ਗੋਦ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਖਾਦਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਸਲੀਮ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕੀ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਹਾਂ ਭਲਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ,
सब तो सुंदर है। खादमा मैं ऐसा सोच रहे हैं, खुदा ने सलीम तो ज्यादा खूबसूरत किसे नु भी नहीं बनाया। हाथ जोड़ के खादमा कहन लगी, जहां पना ये हो ही नहीं सकता कि सलीम तो ज्यादा कोई खूबसूरत होवे। वो किस तरह हो सकता है? खुश होके प्रसन्न होके पंज मोरां खादमा दी हथेली ते टिकाइया। आखे खादमा तू ये काम छोड़, जा आगरे विच, जा आगरे शहर विच, लब कोई ऐसा बच्चा जो सलीम नालों ज्यादा खूबसूरत हो गया। मैं तेनों भी माला माल कर देंगा, बच्चे दे मां बाप नूं भी माला माल कर देंगा, दोहां दियां झोलियां भर देंगा। और मैं जानना चाहना कोई सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है? अगर मोहदा मारिया ये अकबर अपनी खादमा दे नाल इस तरह दियां गल्लां कर रहे हैं और कह रहे हैं, जा लग के लिया हुक्म मन खादमा चल पई। सवेर दी गई, दिन ढलदिया वापस आ रही है दबे हुए पैरां नाल, तरह तरह दी विचारां दी डुबी हुई गोद विच एक बच्चा ले आया। सिद्धी अकबर दे पास आई, देख के अकबर खुश होया है, कोई बच्चा ले आई है इसकी गोद विच है। खादमा तू ले आई है ऐसा कोई बच्चा जो सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है? हां जहां पना मैं ले आई हूं। अकबर ने चद्दर एक पासे की थी, चीथड़ियां दे च लिपटिया होया एक करूप और महिला बच्चा खादमा दी गोद विच है। हैरान होके अकबर कहिंदा है, ए बच्चा किसदा बच्चा है? जहां पना ये मेरा ही बच्चा है, मैं सारा आगरा शहर गांव आ रहा है, जहां पना इस बच्चे तो मैनु ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं दिसया। सच पूछें और मेरे जान दी बख्शी करें, ऐ जहां पना तेरा सलीम भी इसके सामने पिक कर है। कहिंदे ने नौकरानी दे इना बोला ने अकबर दियां अखां खोलियां। ख्याल आया मैं मोह दी नजर नाल सलीम नूं वेख रहा, ये मोह दी नजर नाल अपने बच्चे नूं वेख रही है। मोह करके सारे जहान नालों इस नौकरानी नूं अपना बच्चा खूबसूरत दिखाई दे रहा है और मोह करके मैनू सलीम सब नालों सुंदर दिखाई दे रहा है। सियाणा सी आलम फाजला नूं अपनी सभा विच रखदा सी, एकदम गल समझ दे चाह गई, पकड़ दे चाह गई। और ये असी रोजमर्रा दी जिंदगी विच देखदे आं, मनुख नूं अपने औगणा नाल भी मोह हो जांदा है, किसी दे गुण भी उसनूं चंगे नहीं लगदे। अपना करोड़ बच्चा भी महान है, यूसुफ है, लेकिन पड़ोसी का सुंदर बच्चा भी क्रूप है, बेमैनी है। तो स्वप्न उजागर करता है मोह, और यह स्वप्न बनावटी होता है, वक्ती होता है, आरजी होता है, और मनुख इसी चीज फसया रहता है। कदी कदाई
कोई मनुख प्रभु की शरण प्रकट प्रभु का चिंतन करे नाम दे गीत गांदिया गांदिया मऊ दे पर्दे नूं परे सुटदा है निर्मोह हो जाता है निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है मऊ ग्रसे लई केवल उसका परिवार और उसके चो भी कुछ सदस्य उसके अपने ने बाकी तो सारे का सारा पराया इतना वड्डा जगत ते ओपरा होवे पराया होवे तो फिर ते मनुख भय विच जीवेगा डर विच जीवेगा दुख विच जीवेगा इस वास्ते मोह ग्रसिया दुख विच ते भय विच जीवदा है सारा जगत अपना है प्रेमी लई सारा संसार अपना है तो निर्भय होके विचरदा है आनंद नाल विचरदा है सुख नाल रमण करदा है सब जो अपने ने मोह दी सीमा होंदी है निर्मोही असीम होंदा है निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है मोह ग्रसे लई केवल परिवार ही उसका जो है अपना है बहुत छोटी दुनिया होंदी है मोह ग्रसे दी जिसकी दुनिया छोटी उदी अकल छोटी उदी सोचनी छोटी उदी समझ छोटी उदा सब कुछ छोटा बहुत छोटे तल ते जीवदा है मोह ग्रसिया मनुख और असीम तल ते जीवदा है निर्मोही कोई सीमा नहीं परमात्मा की कोई सीमा नहीं निर्मोही की कोई सीमा नहीं साडे देश देच एक ऐसा भी पुरश होया है राजा सी स्वभाव किधरे मां बाप ने जन्म समय उसका ना रखिया सी निर्मोह और वड्डा होके भी यही नाम पर चलत रहा निर्मोह राजा निर्मोह इतिहासिक वार्ता है एक ऋषि ने जब यह ना सुने राजा निर्मोह हो नहीं सकता कठिन है औखी गल है तो परीक्षा लई चल पिया निर्मोह दे महलां दी तरफ जैसे महलां विच दाखल होया राजे निर्मोह दी पटराणी मिली और इस ऋषि ने पूरा तौर तरीका पहले बनाया हुआ सी कि मैं स्पष्ट करना है तू मोह ग्रसे है निर्मोही नहीं राजे निर्मोह का लड़का इधरे ऋषि की कुटिया च आया सी और ऋषि ने उस बच्चे नु बिठा दिता आखे जिन्ने चिर तक मैं ना आवा तू बैठी मैं थोड़ी देर दे चावना राणी नु ऋषि कहिंदा है राणी तुमको अति विभक्त सुत खायो मृगराज हमने भोजन ना कियो तिस मित्र के काज हे राजमाता थोड़ा सुत थोड़ा लड़का राजकुमार शेर ने खा लिया मैं ते भोजन छड़ के दौड़े हां थानू ए खबर सुनाने वास्ते पर ए राणी राजे निर्मोह दी राणी उस असीम मनुख दी संगत च रह रह के उस असीम मनुख दी पत्नी भी निर्मोही हो गई सी मोह तो उच्ची हो गई सी ऋषि नु कहन लगी एड एक साखा घनी पंखी बैठे आए ओ फुटी चीरी पई उड़ उड़ देश दिस जाए पेड़ एक साखा घनी पंखी बैठे आए ओ फुटी चीरी पई उड़ उड़ दे दिस जाए संसार एक वृक्ष दी तरह है कई इस दियां शाखा ने कई मुल्क ने कई इलाके ने
और संस्कारा वे प्रालब्ध वश होके संजोग वश होके इना परिवारों दिया टहणिया ते आके पंछी बैठते ने। मौत दा सूरज चढ़दा है, दरगाह तो चीरी पाटदी है, ये पंछी वारी वारी उड़ उड़ के अपनी दिशा नू चले जांदे ने। ऋषि ये कोई नवी खबर ते तू नहीं लेके आया, ये रोज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा निजाम है, ऐसी बनतर है, ऐसी प्रभु दी लीला है। ऋषि दंग रह गया है। तप साधना करदिया करदिया थक गया, परिवार दे मोह दी दीवार अजे भी नहीं तोड़ सके, धन दे मोह दा पर्दा अजे भी बाकी है, जीवन दे मोह दी पकड़ अजे भी बाकी है। पर सोचता है चलो उस नाल ते गल करिए जिसका ना ही राजा निर्मोह है, उन्हों तो वेखी है गया। राजसभा ऋषि दाखल होया, आहो भगत की थी, डंडौत की थी, राजे ने सम्मान दिता, बिठाया, आन का कारण पूछया, ऋषि राज किस तरह पधारे, साढ़े इस घर नू किस तरह भाग लाए, इस राजसभा नू आके पवित्र कीता, आहो भाग साढ़े, कोई सेवा होवे ते दसो। ऋषि कहिंदा राजन बहुत दुख, बहुत संताप, बहुत माड़ी खबर राजन दसन लगे हैं, मेरी जबान लड़खड़ाती है पर मजबूर हां दसन देवी। मुस्कुरांदे हुए चेहरे नाल राजा निर्मोह कहिंदा दसोरा राज ऋषि संत जन दसो। खड़ा होया ऋषि ते कहिंदा है राजन तुमको अति विपत पल पल घड़ी घड़ी सुत

छड़े पुत्र दी मड़ी लाश मेरे कोल है। शेर ने हमला करके उसनु जख्मी कीता है, मार दिता है, उदी लाश मेरे कोल पई है। बस यही संदेशा देने वास्ते मैं थोड़े कोल आया, थानू दसन लई आया। राजा निर्मल प्रसन्न चित होके प्रसन्न मुद्रा विच हस्ते आया कहिंदा है,

वासा जगते सराय को यहां सभी मुसाफिर लोग। असीते कॉफी समय तो समझी बैठे हैं सराय है। एक आउंदा है, एक जाउंदा है, एक फूल खिड़दा है, एक मुरझा रहा है, एक फल फूल चो निकल रहा है, एक फल डिग रहा है, एक तारा उभर रहा है, एक टूट रहा है। इत एक प्रभु दी लीला समुची सरां देच ये आवागम बने होया है। और इत्थे सारे मुसाफिर ने, असी भी मुसाफिर, असी भी एक दिन रुखसत हो जावांगे। ये कोई नवी गलते नहीं, पर मैनू दुख है, अफसोस है, ए ऋषि तू महान कार्य जो तप कर रहा सी तप क्यों छोड़िया? इस फोके संदेशे लई तू अपनी तपस्या क्यों छोड़ी? तपिया तप क्यों छाड़ियो? यहां हरख नहीं सो, ऐ तपीश्वर तू तपस्या क्यों छोड़ी? जितने सौखे ढंग नाल ए गल राजे निर्मव दी बयान कीती जा सकती है, जीवन विच धारना उतना ही कठिन। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लखते जिगर अजीत सिंह जुजार सिंह कोल बैठे ने, गड़ी नू चारों पासे दुश्मना ने घेरे है। सतगुरु अजीत सिंह नू तैयार कर दें, और सिखा नू नहीं कहंदे किधरे इतिहास ए इल्जाम ना ला देवे अपने बच्चे बचा ले सिख मरवा ले। नहीं, अजीत सिंह नू तैयार कीता है, और सतगुरु उसनू जो कुछ कहंदे ने अला यार खां जोगी ने इंज कलम बंद कीता है। ऐ मेरे बच्चे, एक ख्वाहिश है मेरी, तू पूरी कर। अजीत सिंह हाथ जोड़ के कहंदा है, गुरुदेव पिता तुसी सारियां दी ख्वाहिशां पूरी करन वाले, असी की थोड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं? नहीं, तू ही पूरी कर सकता है। हुक्म गुरुदेव पिता, ताबेदार। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमान कर देने, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, बस इतना ही नहीं, पूरी गल सुन। ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें, होनहार साहिबजादा अजीत सिंह हाथ जोड़ के कहंदा है, नाम का अजीत हूं जीता न जाऊंगा, जीता गया तो हार के जीता न आऊंगा। स्वयं श्रृंगार के शस्त्र पहना के सतगुरु भेजते ने अपनी अखां दे सामने, शहादत दा जाम पींदे आया दोवें लखते जिगरां नू देखदे ने, शुक्र करदे ने परमात्मा दा, ईश्वर दा, अकाल पुरख दा, असीम प्रेम दी दुनिया च जीण वाले धन गुरु
गोविंद सिंह जी महाराज ना ताज दा मो ना तहत दा मो ना परिवार दा मो ना संसार

है, मोह ग्रसेदी विसीम है, निरंकार असीम है, प्रेमी असीम है। जैसे कोई तरह तरह प्रभु की शरण विच जांदा है, आसरा पकड़ता है, अरजोई करता है, अरदास करता है और उसकी याद विच डुबदा है, मोह प्रेम बन जाता है। फिर कुछ भी चला जाए, कुछ भी आ गया, ना हरक ना सोग, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम।

हर हर हरे। मनुख दियां बुनियादी मूल कमजोरियां दे चों प्रबल कमजोरी अहंकार। आहं मैं हां मैं हां मैं हां। जिन्ने चिर तक ए मैं रहंदी है, ए अहं भाव रहंदा है, उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलदा रहंदा है, चलदा रहंदा है। ए जन्म ते मरण दा मूल है, ए जन्म ते मरण दा कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, होमें एहा जात है, होमें कर्म कमाए, होमें एही बंदना फिर जौनी पाए। होमें दा स्वभाव है, मनुख जितने भी कर्म करदा है अहंकार आशत, चाहे वो कर्म धार्मिक ने, चाहे वो कर्म सामाजिक ने, चाहे वो कर्म राजनैतिक ने। अहं मूल है, अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म विच, और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है, जन्म मरण का कारण बनता है, और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण। इस तरह अहं जन्म ते मरण दी बहुत ही लंबी यात्रा दे च पा देंदा है, बहुत लंबे गेड़ दे च पा देंदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा। हे पाप आत्मा अहंकार, तू जन्म ते मरण दा मूल है। वख वख जीवां विच अपने अपने दोष पाए जांदे ने। जैसे असी वेखदे हां हाथी विच काम रोग प्रधान है, और पतंगे विच दृष्ट रोग, मच्छी विच रसना दा रोग, और इसे तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग। होमे रोग

मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस कीना, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गहे कुरंगा, हिरन्नो नाद दा कन्ना दारो, जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ए रोग बंधन दा कारण बनदे ने, ए रोग दुख दा कारण बनदे ने, और मनुख दे सारे दुखां दा मूल कारण अहंकार। अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करदा है, किधरे सूक्ष्म रूप, किधरे पदार्थां दा अहंकार, किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा दे प्रति कीते गए ने उसका अहंकार, किधरे इस जीवन का अहंकार, किधरे उस परम जीवन की प्राप्ति के जो साधन ने उन्हां दा अहंकार। मूल रूप विच ए अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंदा है, जोवन जवानी स्वप्न दे आधार ते खड़ा होंदा है, और शक्ति सता ताकत इस दे आधार ते खड़ा होंदा है। जो बन धन प्रभ ताकै मद में, अहनिश रहे दीवाना, दिन रात पागल दी तरह घूम रहा है। जो बन दी मस्ती विच, धन दी मस्ती विच, और सता दी मस्ती विच, धन जेब दे चोवे या मन दी सोचनी दे चोवे, जोबन वंत होवे या जोबन दी चाह मन दे चोवे, सताधारी होवे या सता दा चिंतन अंदर चलदा होवे, दोहां हालतां च पागल हो जांदा है। सता पागल कर देंदी है, सता दा चिंतन भी पगला देंदा है। जोबन पागल पंदी सीमा तक ले जांदा है, पर जोबन दा चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन, धन जेब दे च है, धन घर दे च है, या धन सोचां दे च है, विचारां दे च है, मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है, और सता आश्रित है। तभी पातशाह फरमान कर रहे ने, जोबन धन प्रभता कै मद में, अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। इसे विच अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है, दूसरे नूं तुच्छ समझदा है। आपस को दीरग कर माने, औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मना, मैं देखे दोजक जात। हर एक नूं छोटा समझदा है, चाहे अगला महान होवे, चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप नूं महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान करदे ने, दर महफिले के खुर्शीद, अंदर शुमार जर्रास्त, जिस दी महफिल दे च खुर्शीद, ए सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिहा रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद, अंदर शुमार जर्रास्त, खुद रा बजुर्ग दीदम, शर्ते अदब नवाशद। उस महफिल देच तू अपने आप नू आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान, जिथे सूरज भी एक निक्के जिहा जर्रे वर्गा है।
इसलिए भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू दा महान शायर इसनु एक होर ढंग नाल भी बयान कर देने, इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म, मैंने ये दर्स पाया अपनी बसीरत से। ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान। इलम दी जहालत नालों चंगा है जहालत दा इलम। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है, और कई गुणा उस तो वद अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल दा सबूत है जो इलम है वो अमल देच नहीं, और ए अहंकार मूर्खता दे खड़ा है। इलम के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम, ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है, ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है। भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं, हम बड़े कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभे ननासी कह रविदास सभे नहीं समझसे भूल परे जैसे बोरे। इत सारे भूल के पागल होए फिर देने, कौन हम बड़ कव, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान, बस यही जहालत लई फिर दी है। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा, मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कवे नानासी, मैं बहुत वड्डा सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहंदे ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होंदा है, और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होंदा है, क्योंकि अवगुणा दे आसरे ते अहंकार नू अस्थूल रूप धारण दा मौका नहीं मिलदा। एक गल वखरी है कि मूरख गुण ना होंदे आया भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं होंदा, उसनू इतना बोझल नहीं करदा। एक गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है। नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करंत, इक ना नाद ना वेद। इक अदनू न किसी प्रकार दी विद्या, न संगीत दा ज्ञान, गे रस रस कस ना जानन, इक ना सुरत ना सिद्ध, अकल सिर अखर का भयो ना लहन। अक्षर दा कोई बोध नहीं, अकल दे तल ते जी नहीं रहा,
संगीत दा कोई बोध नहीं, किसे धर्म ग्रंथ दा कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करंद असली खोते ने अहंकार भी पंड चुकी फिर देने। पर बड़ा परबल अस्थूल अहंकार प्रगट अहंकार ते गुणा ते ही खड़ा हुंदा है। और अहंकारी दियां अखां, अहंकारी दा मस्तक, अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप देच अहंकार दी प्रदर्शनी कर दी है। भगत कबीर कहंदे ने चलत कत टेडे टेडे, अहंकारी सिद्धा चल ही नहीं सकता। अगर सिद्धा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दियां निगाहां मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा दी निगाह थले आ जावां, अहंकारी चाहता है सारियां दियां निगाहां मेरे ते आवन, सब मैनू ही देखन। चलत कत टेडे टेडे, अस्त चरम बिस्टा के मुंदे, दुर्गंध ही के बेडे, तू है कि हड्डियां हड्डियां दे चढ़े होया मांस, मांस दे चढ़ी हुई चर्बी, और चर्बी दे लिपटी हुई खलड़ी, और की है तू। हड्डियां दा माण, जोबन जवानी दा माण, हड्डियां दा माण, मांस दा माण, मिंज दा माण, और खलड़ी दा माण, इस तो इलावा और है कि एक आया ते इतनी नापाक है, कोई भी पवित्र चीज इस नल छू जाए मैली हो जाती है। और इस काया दा अहंकार धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, कर्पूर बहुप सुगंधा परस मानक देहं मलीनं, मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। कपूर ते चंदन जैसियां फुलना जैसियां पवित्र वस्तुआं मनुखी तन नाल छूंदिया स्पर्श करदिया मैलियां हो जांदियां ने, मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो, है कि दुर्गंध खून मिंज मांस खलड़ी। अज्ञानी एवें तन दा अहंकार करदा है, जो बंदा अहंकार करदा है, फिर धन दा अहंकार, धनवंता होए क्या को गर्वे, जा सब किछ तिसका दिया दरबे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने, धन किथे उस दे वसाहल नाली सब कुछ प्राप्त होंदा है। और सब तो वड्डा वसीला है ए तन, और तन उसकी देन है, ये दिमाग उसकी देन है, और ये तन ते मन दे आसरे ते तू धन कट्ठा कर लिया, तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है। पर धन दा अहंकार सता प्रभता, इसका अहंकार अगह चलिए ता अहंकार नू बैठन वास्ते कोई गुणा दा सिंघासन चाहिदा है। दान दा अहंकार, ज्ञान दा अहंकार, सेवा दा अहंकार, बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठने लिए बनाई ना है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है। और गुणा दे आसरे ते बैठ के ये प्रसन्न बड़ा होंदा है, क्योंकि जगत तो जस मिलता है, जगत तो मान मिलता है, वो मान इस दे अहंकार नू होर वधांदा है, होर वधांदा है। देखने दे चाया है धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया है, फिर धन दा त्याग है
तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया। हुण त्याग दा अहंकार सता कोल है, सता दा अहंकार सता दा त्याग कर देता है। हुण त्याग दा अहंकार ऐसा अक्सर देखण नूं मिलदा है। पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग कीता है, उस त्याग का अहंकार, अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है। और अहंकार तो बचना औखा, जिहड़ा सिंघासन भी असी निरंकार नू बिठाण लई बनाने अहंकार बैठ जांदा है। दान दा सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी, भगवान आके बैठे, निरंकार आके बैठे, अहंकार आके बैठ जांदा है। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे राही, रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता, ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए, पर इससे भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नूं दूसरे तुच्छ प्रतीत होंदे ने, अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है। और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचदा है उदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार। दावा कीता सी हरनाकश ने मैं परमात्मा, कौन होंदा है परमात्मा। दावा कीता सी नमरूद ने मैं हां खुदा, कौन होंदा है खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा किसे नूं भी मनन नूं तैयार नहीं। इस वास्ते अहंकारी दा सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर। और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं, सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है और वड्डा होके दिखाण दी कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दियां निगाहां दा मरकज बन जावां, केंद्र बन जावां, हर एक दी निगाह मेरे ते टिके और हर एक दा माण मैं हो जावां, मेरे ते माण करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दिए इंज कह लईए, यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है तू है तू है तू है तू है। अहंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां, ये जन्म मरण का कारण बन जाती है। तू है तू है तू है, ये जन्म मरण नूं मिटा के प्रभु का रूप बना देंदी है। बूंद सागर दे चलीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कबीर कहते ने तू तू करता तू भया मुझ में रहा न हूं जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू। तू है तू है तू है, इस बिरती ने इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिले हैं सारंग पानी राम कबीरा एक भय है कोई न सके पछानी। तू है तू है तू है,
इसने भगवान का रूप बना दिता। मैं हां मैं हां मैं हां ये शैतान का रूप बना देता है। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसते रोम रोम देच जिस दिया सारिया क्रियावां देच भगवत दी प्रदर्शित भगवत दी नुमाइश हो रही है। परमात्मा ही प्रगट हो रहे हैं। श्री रविदास सही कह रहे ने, जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही। जब मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं। ये तू ते मैं दोवें इको सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज की बाणी का फरमान, हौमें नावे नाल विरोध है, दोए न वसे एक ठाए। मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हां। अहंकारी की सारी साधना है मैं हां मैं हां, उदी सारी भज दौड़, उदी सारी किरिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत, ये किस कारण हो रही है? मैं पर विनम्र मनुख दा संत दा सब कुछ तू आश्रित है, तू ही है तू ही है तू ही है। उथे मैं दी कोई चिंगारी नहीं रहिंदी जिस विच गुण भस्म हो जांदे ने। बस तू ही तू ही तू ही। एक आलम दा कहना है, अज राह चनार अज राह चुनार कि सलामत न कुनत। इस ढंग नाल चल रस्ते देच कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकड़ के ना चल। बा खलक चुना जी के कयामत न कुनत, खलकत देच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा, दर पेश ना खुआनंद ओ इमामद न कुनद। जे किधरे इबादत करनु तेरा जी करे तो निमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अग्गे होके नहीं। ऐसा ना होवे कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़दिया मस्जिद दे च भी तू कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरां दे च भी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने, ते प्रधान ते परमात्मा है। या फिर जिसका मिट गया सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभमान। जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनता है। पर जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है, शायद उसनु मखलूक दे कदमा दे च भी जो है था ना मिले। पर अहंकारी ते सिर ते बैठन दी कोशिश करता है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगां दे सिर दे उत्ते ही हुंदे ने। सारी राजनीति सारी सता अहंकार आश्रित ते है, और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठदा है। कई दफा सिर हिल जांदे ने ते थल्ले गिरदा है। इस वास्ते कहंदे ने गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगां दे सिर झुकाना चाहुंदा है, एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जांदा है। अहंकारी शर्मसार होके रह जांदा है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार एक बहुत वड्डी दीवार है, एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार नू तोड़न वास्ते है। पर अहंकार बड़ा चलाक है, ये धार्मिक साधना नू भी अपना सिंघासन बना देंदा है। बैठना सी उसते प्रभु ने आप बैठ जांदा है।

ये बड़ा असाद रोग है। अहंकारी उस दे हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान विच कोई रमण कर रहा हो, भ्रमण कर रहा हो, क्योंकि अहंकारी दे गूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते ने और अहंकारी कल्ला रह जाता है और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान विच भयानक जंगल विच मनुख तनहा रह गया हो। असाद रोग है, किसे वैद को इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान कर देने, वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानक हर हर हरे। है वेद, है हकीम, कौन परमात्मा, केड़ी दवाई है उसदे कोल, बस परमात्मा दा नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी, किधरों बारों नहीं लबनी, ये दवाई भी अंदर पई है। इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है, होमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसे मां है। पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है, अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे है, हूं जे किधरे अंदरों निकले तू इत औषधि हो गई। मैं इत रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोवे मनुख दे अंदर ने। इसकी मर्जी है रोग नू वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नू घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा, मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है कुछ भी नहीं मेरा, मैं ना ही, प्रभ सब किछ तेरा। ईघे निर्गुण उगे सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा। ये जो तेरा तेरा है ये भी अंदरों निकलेगा, और ये जो मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है, और गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ए फरमान ए वाक प्रेरणा दे रहा है। जे रोग अंदर है तो वैद भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है, तो

सच का पंथा थाटियो, सतगुरु दी बाणी दा फरमान हुण काल दा जाल सानू वेख नहीं सकदा। काल दी फाई साडे ते पै नहीं सकदी, क्यों? असी सच दे मार्ग ते चल पए, असी सच दा पंथ बना लिया, असी सच दे राही बन गए। काल जाल जम जोह ना साखे, सच का पंथा थाट्यो। काल समा अकाल समय तो रहत, फाई समय दी है, जाल समय दा है। मनुख वक्त दी गिरफ्त दे च है, मनुख समय दे बंधन दे च है, और समय दे प्रभाव हेठ जी रहे। वक्त समा काल मनुख तो जो चाहता है कराही जा रहे है, कराही जा रहे है, कराही जा रहे है, और ये सब कुछ मनुख काल दे जाल दे च फस के ही कर रहे है। इंज कह लो बंधन दे च है। समय दा बोध होंदा है दिन करके रात करके, ठहर जाए दिन तो समय नु नापना औखा होवेगा, ठहर जाए रात तां वी समय नु नापना बड़ा औखा होवेगा। दिन ते रात दी ए गर्दिश समय नु नापण दा जरिया बनी, समय नु समझण दी एक प्रेरणा मिली दिन तो रात तो। लेकिन रात अपना एक बंधन लेके आउंदी है, दिन अपनियां बेड़ियां लेके आउंदा है। रात अपनी जाल लेके आउंदी है, दिन अपनी फाई लेके आ जांदा है। शायद इसे वास्ते ते पातशाह ने फरमान कीता, जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाई देती। दिन आया है एक जाल दी तरह, रात आई है एक जाल दी तरह, ते दिन ते रात दियां जो सठ घड़ियां ने ते सब फाइयां ने। रस रस चोग चुगे नित फासे, छूट समोड़े कवन गुने। ए मूर्ख किमें छुटेगा, समा तेरे कोल कराई जा रहे है, और इस सब कुछ तो इस तरह करदा पे है जैसे फाई देच फड़िया कोई पंछी फड़फड़ांदा, जैसे जाल देच फड़िया फसिया होया कोई पंछी फड़फड़ांदा तड़पदा है। तो इस तरह मनुख दिन नू तड़प रहे है, रात नू तड़प रहे है, जो कुछ कर रहे है बंधन ही बंधन, जो कुछ कर रहे है मजबूरी ही मजबूरी, समा खिंच के इस तो सब कुछ कराई जा रहे है। इस वास्ते भारत दा धार्मिक अध्ययन करता, धर्म दी गहराइयां च जान वाला, उसने परमात्मा नु एक नाम दिता है अकाल। परमात्मा दी दुनिया च समा नहीं है, वक्त नहीं है, उत्थे वक्त है ही नहीं। संसार काल है, निरंकार अकाल है। जो संसार विच जी रहा है काल विच जी रहा है, और जो अकाल नाल सुरत जोड़ बैठा है उसे संसार तो उच्चा उठ गया, काल तो उच्चा उठ गया। विद्वाना ने समय दियां तीन धारा

0: ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਪਾਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਇਸ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਅਹੰਕਾਰ ਆਸ਼ਰਿਤ, ਲੋਭ ਆਸ਼ਰਿਤ, ਕਾਮ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਭ ਆਸ਼ਰਿਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਸ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਆਸ਼ਰਿਤ ਚੱਲਣ। ਕਾਮਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਹਰ ਵਕਤ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਲੋਭ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਉੱਤੇ ਜੇਬ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਮੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਆਖੀਏ ਧਾਰਮਿਕ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਗ੍ਰਸਿਆ ਮਨੁੱਖ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲਾਸਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਤੀਜੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਚੌਥੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਦਸਵੀਂ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਸਤਸੰਗੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਤਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਜਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਪਿਆਲੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਉੱਚੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੁਛ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਾਂ, ਜਪ ਕਰਾਂ, ਤਪ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਸੰਸਾਰੀ ਕਰਮ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵਾਂ, तो गुरुद्वारा बाजार बन जाएगा। कामना करके मैं गुरुद्वारे आवा, गुरुद्वारा मार्केट बन जाएगा। कामना करके मैं गुरुद्वारे आवा, गुरुद्वारा एक फैक्ट्री बन जाएगा। फैक्ट्री बाजार विच जाना मैं कोई संसारिक वस्तु लई, मैं गुरुद्वारे भी गया किसी संसारिक वस्तु लई। मैं गुरुद्वारे गुरु लई नहीं गया, मैं गुरुद्वारे प्रभु लई लई गया। मेरी वासना है, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। और सुनो, ये वासना जब असीम हो जाए, भाव जिस दी वासना है वो मिल गई, वासना फिर अग्गे चली गई, फिर वो चीज भी मिल गई, वासना फिर अग्गे चली गई, जो हुण भी कोल नहीं है उन्हों देखन लग पई, ये वासना तृष्णा बन जाती है। इसे नूं तृष्णा कहते हैं। वासना पहले एक वस्तु ते टिकी है, मिल गई है, वासना फिर अग्गे चली गई, मिट्टी नहीं, टिकाऊ नहीं, वो भी मिल गई, वासना फिर अग्गे चली गई। इन्हों कहिंदे ने हुण ए वासना तृष्णा हो गई है। ते तृष्णा इस तरह है जिवें बांबड़ बलदी अग दे च लखणा पाई जाइए, ते अग नूं पुछिए तो रज गई के नहीं। ईंधन तो बालन तो अग नहीं रजदी, तृष्णा कदी तृप्त नहीं आती। तृष्णा मनुख नु सदा अतृप्त रखती है, भुखा रखती है। और ये भी सुन लो, तृष्णालु मनुख के अंदर कोई गुण नहीं आता, नहीं आता, कोई कोमलता नहीं आती। तृष्णा बनती किस तरह है, वासना कामना ही तृष्णा बन जाती है। और वासना दे केंद्र तीन, मैं फिर अर्ज करा, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। वासना असीम हो गई है, रुकती नहीं है, तृष्णा बन गई है, ये हुण भ्रष्ट हो जाएगा, इस वासना दे दरिया विच डुब जाएगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, मैं मनुखता ते निगाह मारदा की देखदा, हम देखा तें डुबे अले, डुबदे पे सब गर्क ने, सब डुबे हुए ने, मैं तो ऐसा देखदा। ये भी मैं अर्ज कर दिया नुकता, कोई पानी दा सुभाव नहीं है मनुख नूं डोबना, नहीं डोबदा, पानी दा सुभाव ही नहीं है डोबना। अगर पानी दा सुभाव डोबना होंदा तो फिर कुत्ते डुबने चाहिए सन, मज्जां डुबनिया चाहिए सन, गवां डुबनिया चाहिए सन, शेर डुबने चाहिए सन, बिल्लियां भी तैरदियां ने, कुत्ते भी तैरदे, गवां भी तैरदियां ने, मज्जां भी तैरदियां। हैरानगी, शेर भी तैरदे ने। केरला विच देख के मैं दंग रह गया, 60 फुट गहरे पानी विच हाथी इशनान पिया करता है, गहरा अंदर चला गया, फिर उपर आ गया, तैरदा पे। मैनू इंज लगे जिवें पहाड़ पानी दे तैरदा पे, इन्ना वड्डा भारी बरकम जिसम। काफी चिर होया इस दृश्य नूं देखिया, मैनू ये ख्याल मैनू उत्थों मिलिया, कहा पानी दा सुभाव डोबना नहीं है, नहीं तो हाथी डुबना चाहिदा सी, इन्ना गहरा पानी है झील दा, तैर रहे गौं तैर दिया ने, घोड़े तैर दे ने, मज्जां तैर दिया ने, बिल्लियां तैर दिया ने, कुत्ते तैर दे ने, बदकिस्मती है मनुख डुबदे ने, मनुख डुबदा। ते हुण पानी कोल पुछ लईए, ओ बिल्लियां नाल तेरी दोस्ती है, कुत्तियां नाल तेरी दोस्ती है, मनुखां नाल तेरी दुश्मनी है। कुत्ते ते तैरदे ने, सप तैरदे ने, इन्ना जहरीला जानवर तैरता है, कोई नहीं डुबता। घोड़े तैरते ने, मझां तैरदियां ने, हाथी तैरते ने, शेर तैरते ने, चीते तैरते ने, मनुख डुबते हैं। मनुख डुबदा है, अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है, तवाजन खो बैठता है। वरना पानी मनुख नू भी नहीं डुबदा। कुछ सियाने कहिंदे ने जिन्हें किधरे पानी विच एक दिन भी जो है तैरना सीखिया ते तैरदा है, जीवन भर इस नू नहीं भुलेगा। बाकी विद्या कला भुल सकती है, तैरना नहीं मनुख भुलदा। जम्मू तवी देच मैं एक दफा अभ्यास किया। मैं कह 30-40 साल हो गए, बहुत पुरानी गल, पाकिस्तान तो आए सी, दरिया देच तैरदे होंदे सी, टोची च देखदे आ जिस तवी देच, भुल गया कि मैनू आउंदा। दो तीन चंगे तैराक विचकार सन, मैं कह देख लेना जे डुबा तो फिर संभाल लेना। मैं तजर्बे दे तौर ते देखिया नहीं डुबिया। मैं तैरना मनुख नहीं बोलता अगर आ गया, किसे नू भी आ गया। बाकी भुल सकदा है, संगीत सीखिया अभ्यास नहीं करेगा भुल जाएगा, तबला सीखिया अभ्यास नहीं करेगा भुल जाएगा, कोई भी कर्म कोई भी कृत अभ्यास नहीं करेगा भुल जाएगा। तैरना मनुख नहीं बोलता। प्रकृति कुदरत भी चाहती है मनुख ना डोबे के ना डोबे। और वाकई पानी मनुख दा वैरी नहीं है। तुसी आखोगे फिर डोबदा क्यों है? हैरानगी है, जिंदा मनुख डुबदे ने, लाशां ते तैर दिया ने, मुर्दे ते तैर दे ने। मैं बनारस देच प्रयागराज देखे जिन्हां नूं जल प्रवाह करदे ने गंगा दे, बहुत वड्डा पत्थर उन्हां दे नाल बनदे ने, हद हो गई, बंदा तो उंज डुब जांदा है। ये मुर्दे नाल पत्थर बनने ने, ये डुबदा ही नहीं। लाशां तैरदियां ने, जिंदा मनुख डुबदे ने। कारण कि भय करके जिंदा मनुख अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है, तवाजन खो बैठता है, संतुलन गवा देता है, पानी उसनु डोब देता है। चिंता करके, फिक्र करके, तनाव करके मनुख संसार देच डुब जाता है। वरना संसार दा सुभा ही नहीं है किसे नु डोबे, संसार नहीं डोबदा किसे। ए भी मस्क, अगर राजपाठ कुर्सी डुबदी है तो जनक डुब जाना चाहिदा सी, जनक ते नहीं डुबया। महाराजा रणजीत सिंह डुब जाना चाहिदा सी, उते नहीं डुबया। अगर ग्रस्त परिवार डुबदा है तो फिर कबीर भी ग्रस्ती सन, रविदास भी ग्रस्ती सन, डुब जाने चाहिए। ये सदना भी ग्रस्ती है, त्रिलोचन भी ग्रस्ती है, ये डुब जाने चाहिए। राम भी ग्रस्ती ने, श्री कृष्ण भी ग्रस्ती ने, तीन सिर मोर देवते ब्रह्मा विष्णु महेश ग्रस्ती ने, ग्रस्ती ने, डुब जाने चाहिए। परिवार नहीं डूबता, धन संपदा नहीं डूबती, धन भगत कमांदे रहने किरत करके। और बहुत सारे छोटी दे संत अवतारी पुरुष ते राजे सन, राम अयोध्या दे नरेश राजे सन, जनक राजा है, हरिश्चंद्र राजा है, बड़ी धन संपदा। महाराजा रणजीत सिंह महाराजा ने बड़ी धन संपदा, होते नहीं घर को ना पदार्थ डोबदा है, ना परिवार डोबदा है, ना प्रभुता डोबदी है, ना कुर्सी डोबदी है, चौधरपना नहीं डोबदा। पर मनुख डुब जाता है, बैलेंस बिगाड़ बैठता है, संतुलन गवा बैठता है। ਤਵਾਜ਼ਨ ਖੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਯੋਗੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਗੋਰਖ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਰਪਟਨਾਥ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੇ ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਾਰ। ਇਹ ਜੋ ਨਤਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਦੁਸਤਰ ਹੈ ਬੜਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਜਾਈਏ? ਡੋਬਦਾ ਤੇ ਡੋਬਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗਰਕ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਡੁੱਬਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਚ ਚੌਧਰ ਪਣੇ ਚ ਇਤਨਾ ਡੁੱਬਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਗਰਕ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਤਾ ਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ, ਅਮ ਦੇ ਖਾਂ ਤੈਂ ਡੁੱਬੇ। ਇਹ ਯੋਗੀ ਚਰਪਟਨਾਥ ਜੋ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਯੋਗੀ ਬਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੋਤਰ ਕਹੀਏ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਾਰੋ, ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ ਅਵਧੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਦਾ ਸਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਐ ਅਵਧੂਤ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਐ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਰਾਰਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਈਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਿਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਮਿਠਾਸ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਆਖੇ ਆਪੇ ਸਮਝੇ, ਤਿਸ ਕਿਆ ਉੱਤਰ ਦੀਜੇ, ਸੱਚ ਕਹੋ ਤੁਮ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ, ਤਿਸ ਕਿਆ ਬੈਸਣ ਦੀਜੇ। ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ? ਸੱਚ ਕਹੋ ਤੁਮ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਯੋਗੀ ਹੈ, ਪਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇਰਾ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਪਾਰ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰ ਵਸਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਗਾਹਾਂ ਪਾਰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਕਦਮ ਉਰਾਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਲਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੇਤਾਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਪਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ। ਪਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖੜਾ ਉਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਰਾਰ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਗ੍ਰਾਮੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਗ੍ਰਾਮੀ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਰ ਤੱਕ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਾਰਗ੍ਰਾਮੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਸੰਸਾਰੀ ਉਰਾਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ, ਛੱਡੋ ਪਾਰ ਲੈਣ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਰਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਉਰਾਰ ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਜਗਤ ਹੈ, पार जान दी ते हुण तमन्ना ही नहीं रही, इच्छा ही नहीं। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। इस युग दा सिर मोर औगण काम वासना। पिछले युग लंघे ने जिन्हां दे कुछ सिरमोर औगण सन, किधरे अहंकार वासना, किधरे लोभ वासना। इहदा इह मतलब नहीं कि इक्को ही वासना प्रधान है, नहीं सारियां ने, लेकिन प्रधान इक्को है, बाकी जेर साया है। मैं पहले अर्ज की है, हर मनुख का बुनियादी औगण एक आंदा है, बाकी औगण भी होंदे ने, उहदे जेर साया आंदे। हर युग का अपना औगण होंदा है, एक औगण प्रधान होंदा है, बाकी जेर साया आंदे ने। इस युग का प्रधान औगण महाराज दसदे ने काम वासना। कल कल वाली काम मद मनवा पीवण हार। कामना सर्कल दे घूमदी है, चक्कर दे दायरे दे। प्रथम काम वासना, रूप वासना, फिर पुत्र दी वासना, मित्र दी वासना, धन दी वासना, पदार्थां दी वासना, होर छोटियां छोटियां वासना, चंगे रहन सहन दी वासना, खाण पीण दी वासना, फिर वासना आके केंद्रित हो जाती है रूप ते। यही कारण है कि गुरबाणी और साडे देश दे सारे साधु जन पुरुष नूं जिथे काम कह देंदे ने, गुस्ताखी माफ, स्त्री नूं काम नहीं कह देंदे। काम नहीं, कामना दी मणी। मनुख दी कामना वक्ती तौर ते जिथे रुकदी है। छले कनक काम नहीं, गुरु अर्जन देव जी, छले मनुख छलिया जांदा है, कनक काम नहीं। किधरे लोभ करके, धन करके, कनक सोने करके, किधरे रूप करके छले आ जाता, किथे परमात्मा चेते आंदा। सार किताबली दा करता कहिंदा, कनक कनक ते अधिकता, कनक कनक ते बहु गुणा, सत गुणा अधिकाए, वा खाए बौरात है, वा पाए बौराए। कनक कहिंदे ने सोने नूं, कनक कहिंदे ने भंग नूं। कहिंदा है एक सोना कनक, एक भंग कनक, दोहां नूं कनक कहिंदे ने। भंग कनक इहते खाइए पीए ते नशा चढ़ जांदा है, बंदा पागल हो जांदा है। कहिंदा है एक नूं खांदिआं बंदा पागल हो जांदा है, एक ते सिर्फ हत्थां च आ जाए ते बंदा पागल हो जांदा है। वाह खाए बौरात है, भंग खा लई ते पागल हो गया है। वाह पाए बौरात, धन सिर्फ हत्थां च आ गया तो पागल हो गया, तवाजन खो बैठा, हत्थां च ही आ गया, बस हत्थां च आंदिआं ही डुब गया। वाह खाए बौरात है या पाए बौरा है। तुलसी कहिंदे ने, ऐसो को जन्मयो जग माई, प्रभता पाए जासमत, चौधरपणा मिल गया धन करके या शक्ति करके, ऐसा केड़ा मनुख है जो प्रबल अहंकारी ना हो जाए और गर्क ना हो जाए, डूब ना जाए। ऐसो को जन्म है जग माई, प्रभता पाए जा समद नाए। तो काम ए वासना सिरमोर इस युग दे, अजोका साहित्य, अजोका लिटरेचर जो बाजार विच बिक रहा है, 90% कामक है। अजोकियां जो फिल्मां ने 100% कामक ने। गजब दी गल, वेचना कपड़ा है, रूप स्त्री दा अगों कीता होया है, वेचनी साइकिल है, खड़ी स्त्री कीती हुई है, जिवें साइकिल सिर्फ स्त्री ने चलानी है, पुरुषां ने चलानी ही नहीं। कपड़ा नहीं बिक रहा, साइकिल नहीं बिक रही, कार नहीं बिक रही, मूल रूप देखते स्त्री बिक रही है, स्त्रियां दे बाजार। मनुख दी वासना, हम कहियत कल युग के काम। ए वासना प्रधान, इस वास्ते ये भ्रष्टपना मनुख की जिंदगी चारों पासे देखोगे। आपकी ज्ञातली अर्ज करा, पुरुष के चेहरे ते स्त्री के चेहरे च प्रकृति ने फर्क रखे है। स्त्री नू होर ढंग का सौंपण देता है, पुरुष नू होर ढंग का सौंपण देता है। ये दाड़ा पुरुष का शिंगार है, शिंगार है, उन्हें शिंगार है, स्त्री के चेहरे ते नहीं है। और बड़े ध्यान नाल सुनना, कुछ धार्मिक अनुभवी पुरुष कहते हैं मदीन नालों नर ज्यादा खूबसूरत है। चलो दो चार उदाहरण दें। शेर बबर उदी गर्दन दे भरवें वाल, उदा रोबेला चेहरा, उदे कोल खड़ी शेरनी बिल्कुल फिक्की लगती, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जितना सुंदर मुर्गा है, मुर्गी तो उदे सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। शीश दी कल दी भरवीं गर्दन, जितना नर चिड़ा खूबसूरत है मदीन नहीं है, जितना नर तोता खूबसूरत है मदीन नहीं है, ते जितना नर मोर सुंदर है, लंबे लंबे पंख, मोरनी बिल्कुल फिक्की, कुछ भी नहीं। देखे होएगा मोरनी को लंबे पंख नहीं होंगे। कई लोग ते जंगलों च जाने, राजस्थान दे जंगल हुण ते शहरां च भी बड़े मोर भरे पै रहे, उहदे कोल ही मोरनी खड़ी आउंदी है, उस ते निगाहां नहीं जांदियां, मोर ते जांदियां। मोर सुंदर है। इते दो चार मैं उदाहरण दिते ने, कायनात दे च कुदरत ने नर नूं ते आप ही शिंगारे है। स्त्री दा शिंगार किसे होर ढंग दा है। मां बनन दी बहुत वड्डी सौगात उसने इसकी झोली च पा दित्ती है, वो पुरुष कोल नहीं है। चूंकि पुरुष नूं ने ते रब ने जो है शिंगारे होया शिंगारे है, तो स्त्री विचारी नूं शिंगार करना पैंदा, करना पैंदा। गुस्ताखी माओ, चूंकि एक बहुत वड्डी सौगात परमात्मा ने स्त्री नूं दित्ती है, मां बनन दी है, मनुख की जन्मदाती है, मनुखता की जन्मदाती है, तो फिर मनुख दे अंदर भी ईर्षा पैदा होती है, मैं भी कोई बनावा। वो जीवदे जागदे मनुखां नूं जन्म देंदी है। ये पुरुष चित्रां नूं जन्म देंदा, तस्वीरां नूं जन्म देंदा। चंगे चित्रकार पुरुष मिलणगे, चंगे संगतराश पुरुष मिलणगे, चंगे कवि कदी कदाए दस भी कविया कोई कद कवित्री हो जाए तो हो जाए, नहीं तो पुरुष ने। दार्शनिक फिलोसफर चिंतक पुरुष ने, बड़े बड़े साइंटिस्ट पुरुष ने। जिंदगी के हर शोबे च अगे ऐ कुछ बनाइए, ऐ कुछ बनाइए। मनोचिंतक तो कहते ने स्त्री ने पुरुष नो जन्म दिता, तो पुरुष सोचता हूं मैं भी तो किसी चीज नो जन्म दे। जिंदा मनुखता नो जन्म दिता स्त्री ने, महान है। मुर्दा चीजा नो जन्म देता है पुरुष, इस मामले च पछड़िया है। कुदरत ने मनुख नूं शिंगारे है, इस दिच पुरुष अग्गे है। स्त्री नूं इस तरह का शिंगार नहीं दिता, पछड़ी हुई है। एक थां ते स्त्री पछड़ी हुई है, एक थां ते पुरुष पछड़िया है। पर हुण कीता की जाए, ये दोवें एक दूजे तो कशिश दे च जीवदे ने। पुरुष इस जो है स्त्री की कशिश दे च, स्त्री पुरुष की कशिश, पुरुष के अंदर पुरुष की कशिश नहीं आउंदी, स्त्री की आउंदी है। वो स्त्री चाहे मां है, भैन है, पत्नी है, चाहे धी है, कशिश स्त्री दी होंदी। गुरु नानक ते कहंदे ने बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा। मैं सतगुर की पंक्ति पढ़ी, दंग रह गया। छोटी जी मासूम बच्ची है, प्यो की परिक्रमा करती है, प्यो नूं देखदी, उहदे पैरां नाल लपकदी है, प्यो भी उस नाल बड़ा प्यार करदा। मां की तरफ नहीं जांदी, क्यों? मां वर्गी तो है ही, मां वर्गा तन तो उहदे कोल है, पिता तो प्रभावित। स्त्री जीवदी है पुरुष दे कशिश दे च। ए पुरुष चाहे पिता है, चाहे भरा है, चाहे पति है, चाहे पुत्र है। पुरुष जीवदा है, स्त्री दी कशिश दे, चाहे स्त्री चाहे मां है, चाहे बहन है, चाहे पत्नी है, चाहे धी है, विपरीत दी कशिश। ते जद विपरीत दी कशिश है तो कई दफा स्त्री च ख्याल आ जाता है पुरुष जैसे बन जाइए। ते पुरुष दा स्वभावक परमात्मा ने कद उच्चा बनाया, जरा स्त्री नाल उच्चा बनाया, तो स्त्री च भी ख्याल आया हुण उच्चा ते कुदरत ने नहीं बनाया, चलो उच्ची सैंडल पा लेने हैं वड्डे एक एक गिट वर्गे, भावे गिर के पैर अपने तुड़ा बैठे, कद जो छोटा है। स्त्री जैसे पुरुष जैसे कपड़े पाने, पुरुष जैसी चाल करनी है, नकल। एक चंबेली गुलाब बनन की कोशिश करे, गुलाब ते नहीं बन सकेगी, पर चंबेली बनना भी उदे लिए औखा हो जाएगा। एक गुलाब अगर कमल होना चाहे, कमल ते नहीं हो सकेगा, लेकिन सही ढंग दा वो फिर गुलाब भी नहीं बन सकेगा। अगर एक स्त्री स्त्री होंदे होया पुरुष होना चाहे, पुरुष ते नहीं हो सकेगी, ढंग दी स्त्री भी नहीं बन सकेगी। पर एक पुरुष अगर स्त्री होना चाहे, होंदा श्रृंगार दिता है ना परमात्मा ने दाड़ा, और दाड़े दी अपनी सीमा होंदी है। मैं 40 साल तो देखदा इत्थे ही रुकिया पिया, एक अद्धा इंच भी अगे नहीं वधदा, इत्थे ही है। ते जिहड़े रोज जंग करदे ने कैंची छुरे लेके, उन्हां दे ते मरदे दम तक वधदे ने, और ये वधदे वाल कह देंदे ने कितने तू छुरे लिया, कितनियां तू कैंचियां लिया, तेरियां सारियां खुंडियां कर देंगे मैं रवांगा, मरदे दम तक रहूं।
1: बोले सोनियार।
0: हुण मैं अर्ज करा, चूंकि विपरीत दी कशिश है, स्त्री पुरुष वर्गा बनन दी कोशिश कर दी है, पुरुष स्त्री वर्गा, तो स्त्री नो सुहप्पण पुरुष दे दिखाई देंदा है, पुरुष नो सुहप्पण स्त्री दिखाई देंदा है। तो फिर की करे हुण पुरुष फिर स्त्री वर्गा बने, फिर चला जांदा है नाई दी दुकान ते, कहिंदा है उस्तरे ते कैंचियां नाल मेरा मुखड़ा इंज बना दे जिवें परमात्मा ने स्त्री दा बनाया, नारी दा बनाया, बनाया प्रभु ने वक वक है, स्त्री वर्गा बना दे। अज तक कोई मोर नाई दी दुकान ते नहीं गया, मेरे पंख कट दे ते मैनू मोरनी वर्गा बना दे, कोई शेर भी नहीं गया, मेरे गर्दन दे वाल कट दे ते मैनू शेरनी जैसा बना दे, कोई मुर्गा भी नहीं गया, मेरी कलगी कट दे, मेरी गर्दन दे पंख कट दे ते मैनू मुर्गी जैसा बना दे। ये मूर्खता सिर्फ मनुख ही करता है, पशु नहीं करते, पशु नहीं करते, मनुख करता है। मनुख नु ये श्रृंगार देता है। मैं अर्ज करा, जिस दिन वाकई वेखण वाली अख होगी, दाड़े तो बिना चेहरा पुरुष का नहीं चंगा लगेगा, नहीं चंगा लगेगा। हुण मैं हैरान हाँ, दाड़े वाला चेहरा स्त्री का भी नहीं चंगा लगेगा, क्या पसंद करोगे स्त्री नू दाड़ी आवे मुछा आवन? ते मैरज करना जिन्हू नहीं आउंदियां, पुरुष नू जे नहीं आउंदियां दाड़ी ते मुछ, उन्हू खोदा कहिंदे ने, ये ते खोदा है। और मैं हैरान होया, एक रागी सिंह सी बड़ा सुंदर कीर्तन करदा सी, पर खोदा दाड़ा नहीं सी, कानपुर दा सी वासी, मुछा नहीं सन, 50-60 साल दा हो चलिया सी। हर शहर दे वैद हकीम नूं कहिंदा सी कोई दवाई है, ऐ दाड़ा आ जाए, मुछा आ जाए, कीर्तन करदे आ गुरु दे दर ते चंगा नहीं लगदा, मैं ऐ शिंगार मेरे कोल नहीं। जगह जगह दवाई पुछदा सी। एक दिन किधरे मेरे कोल पुछ बैठा, मस्कीन जी सुने हैं कोई बाबा बलवंत सिंह नाल तुसी रहे हो ते निर्मले लोग दवाइयां दे बड़े ज्ञानी आंदे ने, तुसी शायद उन्हां कोल कोई नुक्सा सिखिया होवे, कोई ऐसी दवाई दाड़ा आ जाए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਾਈ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ। ਖੁਦ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹ ਤਮਾਮ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ। ਜੀਵਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ। ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ 'ਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਕਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪੁਰਸ਼ ਜੈਸੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪੁਰਸ਼ ਜੈਸਾ ਕੱਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, 20% ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਕਲ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਦਾੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਨੇ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਨੇ, ਸਜਾਇਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਰਦ ਜੈਸਾ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਜੈਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਤਨ ਦਾ ਚੋਲਾ ਤੇਰਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਸ਼ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਤੇਰਾ ਤਨ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਤਨ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਕਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਜੈਸਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਜੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵੀ ਹੈ, ਮਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਆਖਰੀ ਦਵਾਂ ਤੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵਿਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੁਰਸ਼ ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ 'ਚ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਤਰੀ ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ 'ਚ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼, ਪਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਪਰੀਤ ਦੀ। ਇਸ ਵਿਪਰੀਤ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਛਲੇ ਕਨਕ ਕਾਮਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਛਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਨਕ ਕਾਮਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਫਿਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਕਾਮਨੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ। ਤੋ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਮਨਾ ਪੈ, ਜੋ ਹੈ ਕਾਮਨੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਮਣੀ। ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਾਮਰਾਜ। ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਪੁਰਸ਼ 'ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ, ਇਸਤਰੀ 'ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਮੈਂ ਪੁਰਖਾ, ਬੂਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਐਸਾ ਹੈ, ਬਸ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਲੋਭ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਗਰ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਆਫਿਸ ਦੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਭਰੋਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ तो गुरुद्वारा भी दुकान बन जाएगा, मार्केट बन जाएगा, बाजार बन जाएगा। बाजार दी हलचल, मार्केट दी बेईमानी और धंधे दी बेईमानी सारी धर्म विच आ जाएगी, क्योंकि वासना मलिन हो जाएगा धर्म। ये भी मैं अर्ज करते हैं, अगर धार्मिक कर्म में भावना वश ना होके कामना वश होके कर रहे हैं तो कीर्तन भी धंधा, कथा भी धंधा, मत्था टेकना भी धंधा, अखंड पाठ रखाना भी धंधा, पूजा पाठ रखाना भी धंधा। पर मैं भावना करके कर रहे हैं और भावना नाल मैं बाजार विच बैठा तो यकीन जानो दुकान भी हरि मंदिर बन जाएगा। खड्डी ते कपड़ा बुनद्या बुनद्या खपीर प्रभु नाल जुड़ जाता है। चेले रोकते ने हुण ते कपड़ा ना बनो, थानू लोकी ब्रह्म ज्ञानी कहते ने, कहिंदे जद मैं कपड़ा बुनदा सी उदों तुसी मैनू कदी नहीं रोकिया, क्योंकि कपड़े बुनना सिर्फ मेरी रोजी सी, मेरा धंधा सी, ते हुण ते मेरा धंधा ही धर्म बन गया। मैं ते भावना करके बैठ, हुण तुसी कहिंदे हो ना करो, हुण ते मेरा धंधा भी धर्म बन गया। भावना अधीन कर्म धंधे नू धर्म बना देंदे ने, वासना अधीन कर्म धर्म नू भी धंधा बना देंदे। महाराज कहिंदे ने इतनी कामना प्रधान धंधा ही धंधा चल रहा है, धर्म नहीं चल रहा, मनुख दे नाल धर्म नहीं चल रहा, धंधा चल रहा है, परिवार चल रहा है, धन संपदा चल रही है, प्रभुता चल रही है, मनुख दे नाल प्रभु नहीं चल रहा। यह सारा खुलासा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी च जिस तरह है, तुच बुद्धि अनुसार थोड़ा जिहा मैं थोड़े सामने रखिया। भावना करके गुरुद्वारे आवना है, वासना करके कामना करके बाजार विच जाना है, फैक्ट्री जाना है, ऑफिस विच जाना है। पर जे इत्थे भी कामना करके आ गए फिर गुरुद्वारे नहीं आए, तो असी ते बकायदा अरदास करदे हैं फलाने की यह मनोकामना, फलाने की यह मनोकामना, ते हुण सुन लो, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संगराज। इत्थे ते सारियां कामनावां नूं परे सुट गया, किथे सुट के आईए, कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजे कोई। जिथे जोड़े ला के आया ना कामनावां उत्थे ला के थे आ, फिर प्रभु तेरी झोली आत्मक रस नाल भर देगा, आनंद नाल भर देगा, गुरु तेरी झोली दे च रब्बी गुण पा देगा। इस तरह दे जीवन दा ढंग सानू आ जाए तो मेहरज करा परिवार विच बैठे हुए भी असी निरंकार विच बैठे होवांगे, दृष्टि बदल जाएगी। मात पिता सुत बंधव भाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। हे पार ब्रह्म तू मेरा मददगार बनया, किधरे पुत्र बन गए, किधरे पिता बन गए, किधरे दादा बन गए, किधरे भरा बन के, किधरे भैन बन के, तू मेरा सहयोगी बने है, किधरे पति बन के, किधरे पत्नी बन के, परिवार निरंकार दा रूप हो जाएगा, दृष्टि बदल गई। एक ढंग है कि परिवार भी हरि मंदिर बन जाता है, निरंकार दा रूप है। एक ढंग है कि गुरुद्वारा भी संसार बन जाता है, मंदिर भी संसार बन जाता है। जितनी मैनू थोड़ी बहुत समझ सी ते जितना मैं खोल सकदा सी, जिहड़े जिहड़े लफ्ज सतगुरु ने मैनू दिते मैं थोड़े सामने रखे ने। धन गुरु हर राय साहब जी महाराज थोड़ी भावना उजागर करे कीर्तन दे राही, कथा दे राही, इस पाठ दे राही, क्योंकि भावना उजागर हो जाती है तो जीवन च भगवान प्रगट हो जाता है, परमात्मा प्रगट हो जाता है। इस तरह की अवस्था साड़ी बने, सारियां दा बार बार धन्यवाद। बोल चुक दी शमा, वाहिगुरु,
2: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
3: सैभं गुरुप्रसाद बेसुमार अथा अगन अतोले, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जीओ, फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बीज धरती दे जद बो दईए तो एक दिन विच फलीभूत नहीं आउंदा, समा लगदा है, वक्त लगदा है। लंबी चौड़ी यात्रा तो लंघ के बीज फुल बनदा है और फिर फल बनदा है। जैसे फुल फल बनदा है तो फुल अपना रूप गवा देंदा है, फुल दा रूप नहीं रहिंदा। पातशाह दी बाणी दा फरमान, फल कारण फूली बनराए, फल पाका तब फूल बिलाए। बीज फुल बन गया है, अगर ये फुल फल होना चाहता है तो फुल नू अपनी होंद मिटानी पड़ेगी, फुल फुल नहीं रहेगा। और अगर बीज फल होना चाहता है तो बीज नू भी अपना रूप गवाना पड़ेगा, अपनी होंद मिटानी पड़ेगी। बीज बन गया है फुल, हुण अगर यही फुल फल होना चाहता है तो भुल छड़ेगा, फुल मिटेगा। फल कारण फूली बन राए, फल पाका तब फूल बिलाए। ज्ञाने कारण कर्म अव्यास, ज्ञान भया तब कर्मे नाश। सारे दा सारा कर्म कांड रह जांदा है जद मनुख ज्ञान दी शिखरता नू छू जांदा। कर्म कांडी दा ते हो सकदा है ज्ञान खंडी दा आपस दे तालमेल ना बैठे, संबंध ना जुड़े। धार्मिक दुनिया दे जिहड़ा ये झगड़ा हुंदा है कई दफा बीज दा फुल नाल, फुल दा फल नाल। बीज अपनी होंद नू कायम रखना चाहता है, फुल अपनी होंद नू कायम रखना चाहता है, और इस तरीके नाल की हुंदा है उसका संघर्ष हो जाता है जो फल हो गया अगे लंघ गया और तालमेल नहीं बैठता। बस ये थोड़ा जिहा खुलासा मैं थोड़े सामने रखा। पहुंचना ते आनंद तक है, यात्रा शुरू करनी पेगी जप तो। यही लड़ीवार उदास आप जी के सामने विचार रख रहे हैं। मंजिल आनंद है, प्राप्ति आनंद है, आनंद होए बिना जीवन नू बिल्कुल सुकून नहीं मिलना। चाहे कुछ भी जगत विच मिल जाए, धन मिल जाए, प्रभुता मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, जल जस मिल जाए, पर जितने चिर तक आनंद नहीं मिलिया ते आनंद दा मिलना ही परमात्मा दा मिलना है, ते परमात्मा दा मिलना ही आनंद दा मिलना है। यात्रा आरंभ होवेगी जप तो। यही जप एक स्टेज ते पहुंच के जाप हो जांदा है, शब्द प्राणा दे चलन लग पैंदे। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। जद के आरंभता होई सी रसना नाम जपो तब मथिए इन विद अमृत पाओ। आरंभता ते इथों होई सी, एक दो जीबो लख होवे, लख होवे लखवीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। ए तरा पत पौड़ियां, तित पौड़ियां ने। और अगर पौड़ियां ते कोई ऊपर चढ़ेगा तो पहली पौड़ी ते छोड़नी पाएगी, फिर दूसरी ते, और ऊपर चढ़ दे तो जिस ते खड़ा उसने ते छोड़नी पाएगी। एक नियम है, एक ईश्वरी नियम है। जप जाप हो जाता है, जबकि जप आरंभ होया सी गाविए सुनिए मन रखिए भाव, मन विच भरोसा रख के रसना नाल जपना आरंभ कर। समझ लो ओही यात्रा ते चल रहा है जो जप रहा है, बाकी नहीं। बाकी सब यात्रा दी तैयारी पे कर दें, चाहे 50 साल तो भी अगर गुरुद्वारे आ रहे ने ते जप आरंभ नहीं है तो बस ये रस्ता पुछदे पे ने, तैयारी पे कर देने, चले कोई नहीं। और ऐसा भी हो जाता है कईयां दी सारी जिंदगी तैयारी ची लंघ जाती है, चल दे एक कदम भी कोई नहीं। पूछत है पथक ਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਰੇ ਪਗ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸਜਾਈ ਗਏ। ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਝ ਸਮਝ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਇਸ, ਸੂਝ ਸਮਝ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੱਲ ਪਿਆ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਜਪਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਪਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਬਾ ਰਸਨਾ ਉਸਦੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਣੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ। ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਾਰਮਿਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਾਰਮਿਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸਾ ਬੱਜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਖੇਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਪ ਜਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਭਰੋਸਾ ਬੱਜ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਚ ਰਮ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਤ ਹੈ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸਨਾ ਜੋ ਜਪਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਪ ਜਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਾਪ ਬੈਰਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਦੇਈਏ, ਪੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ ਉਸਦੀ ਗਿਰੀ ਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰ ਹੌਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਬੈਠੀਏ, ਹੈ ਤੇ ਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੌਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਗਿਲਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦਾ ਗਿਲਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੜਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਪ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਬੈਰਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ। ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਨਿਆਸੀ? ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, बन से सदन सबह कर समझो मन ही माहे उदासा। कितनी गलती स्पष्ट हो गई।

मैं स्टडी की थी, गुरु गोबिंद सिंह नु पढ़े है, मैं गुरु गोबिंद सिंह जी नु बात कह, अल्लाह की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, मेरे हाथ दे जड़ी कलम है, बाणिये दी कलम नहीं है, हिसाब किताब लिखण वाली शायर दी कलम है। नगमे निकलते ने, फिलसफा निकलता है, गीत निकलता है, गहराइयां निकलदियां ने। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है। फिर भी मेरी इस कलम विच इतनी ताकत नहीं कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जीवनी बयान कर सके। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मझधार को या लहर को देखे। एवं विचकार गल आ गई, जिन्हां ने जानिया वो पूर्ण तौर ते जना ना सके, जिन्हां ने वेख्या वो पूर्ण तौर ते विखा ना सके। जगत ने कह दिता ए बोले हुए रहबर ने, पागल ने, चाहे वो कबीर है, चाहे गुरु नानक, चाहे गुरु गोबिंद सिंह जी, किथे कबूल होए गुरु अर्जन देव जी। अगर कबूल आंदे तो तत्ती तवी ते ना होंगे। किथे कबूल होए गुरु तेग बहादुर साहब। मैं फिर अर्ज करा, जो संत महंत अवतार समय की राजनीति नू कबूल हो जान, उस राजनीति तो उच्चे नहीं ने। जिहड़े संत महंत धार्मिक पुरश उस समय दे समाज है कबूल हो जान, उस तरह की समाजिक जिंदगी तो उच्चे नहीं ने। बस इतनी एक पहचान है, एक कसवटी है, एक पहचान है, ये उत्थे ही ने जिथे राजनीति है, उस तो उच्चे नहीं ने। ये उत्थे ही ने जिथे के समाज जी रहे है। जबकि गुरु अमरदास जी महाराज कहते ने, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। तो मैं अर्ज कर रहा, एक बिरती पैदा होंगी है जिसनों कहते ना उदास बिरती। इसका खुलासा मैं कल थोड़े सामने करांगा। मैं वेख लिया वक्त काफी हो गया तो थानू बहुत लेट ना करिए। सवेरे आपने काम कार जाना हों, आप एक घंटा कदर करनी है तो फिर वेले फिर खामा कर थानू सारे जो है एवं ना वेला करिए। कल फिर इस लड़ी नू अगां तोरांगे। उदास होए बिना परमात्मा की तलाश कठिन है, औखी है, नहीं हो सकती। सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरुप्रसाद बेसुमार अथा अगन अतोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करनी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार आप विचार सरवण कर रहे हो शाम दे दीवान विच। इतनी लंबी ते लड़ी नहीं करनी सी पर हो गई। जप जाप ए बुनियादी मूल बाणियां। अज भाई हरचरण सिंह जी विचार कर रहे सन कि बहुत सारे ऐसे सज्जन ने जिन्हां नूं जाप साहब कंठ नहीं पढ़ नहीं सकते। इन्हां दे च एक विशेषता है, ये वाजे जोड़ी नाल जाप साहब पढ़ा के करीबन करीबन कईयां नूं कंठ करा देंदे ने, शुद्ध करा देंदे ने। शायद ये 8 या 9 तरीक तो अगले भी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਗਾਲਬਨ ਸਨ 58-59 ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਪ ਮੂਲ ਹੈ, ਜਪ ਤੇ ਹੀ सारी गुरमत खड़ी है, जप ते ही सारी सिखी खड़ी है। जप कढ़ दे उते सिख सिख नहीं है। गुरु दी मत सारी जप दी व्याख्या है, जप दी प्रेरणा है। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा, यही जप जाप बन जांदा है। निर्माणता दी मूर्ति सजदे अनंत रूपां नूं सजदा। ये जप जाप जद बनता है तो यही जाप बैराग बन जाता है।

سری راگ محلہ پہلا سب رس میٹھے منیے سنیے سالونے کھٹ ترسی مکھ بولنا مارن ناد کیے چھتی امرت بھاؤ ایک جان کو نظر کرے بابا اور کھانا خوشی خوار جت کھا دے تن پیڑیے من میں چلے وکار زندگی دا لکش اگر اسی لبھیے عام دنیاوی منک دا عام سنسارک انسان دا لکش کی ہے منک کیوں جی رہے ہیں دھن گرو نانک دیو جی مہاراج نے دنیاوی منک دے لکش دا اس پاون پوتر واک دیچ بڑا سندر چترن کیتا ہے تصویر کشی کیتی ہے آپ فرمان کر دینے دنیاوی منک سنسارک منک عام انسان آد آدمی کھان لئی جی رہے ہیں پین لئی جی رہے ہیں پہنن لئی جی رہے ہیں منورنجن لئی جی رہے ہیں پروار لئی جی رہے ہیں پروارک خوشیاں لئی جی رہے ہیں اور پھر جی رہے ہیں سون لئی نیند جیون دا آخر لکش کی ہے اس تو بنا ہور کچھ لبنا بھی نہیں کھانا پینا پہنن زندگی دے چوں کٹ دئیے منورنجن دا سارا سامان ایک پاسے کر دئیے پروارک خوشیاں نو بالائے طاقتے رکھ دئیے تے نیند نو بھی ایک پاسے کر دئیے شاید منک اج ہی خودکشی کر لوے آتم ہتیا دی سوچے پھر میں جیواں ہی کہوں کس لئی جیواں جیونا عام دنیاوی منکھ دا بس اسے لئی ہے دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دی زندگی وچ انہاں تمام وستواں دی پردھانتا نہیں سی نہ کھان دی نہ پین دی نہ پہنن دی پروارک کشش بھی نہیں سی گھروں نکلے بارہ بارہ سال دی اداسی جنگل دے رکھاں تھلے ہور منورنجن بھی کی ہو سکدا سی انج کہہ لو سارے منورنجن نو بلائے طاقتے رکھیا کدرے مرو تھل دا پینڈا کدرے پہاڑاں تے بھرمن سمیر جوگیاں کول کدرے تنہا بیابان جنگلاں وچ رکھاں دے تھلے واسا جسنو عام دنیاوی منک منورنجن کہندا ہے اے تے گرو نانک دے نیڑے ہی نہیں گئے پروارک خوشیاں تے نیند اس سب کچھ نو دھن گرو نانک دیو جی مہاراج نے بلائے تاک تے رکھ کے دس دیتا ہے جیون دا لکش صرف یہی نہیں ہے زندگی دا منورت صرف یہی نہیں ہے کچھ اور بھی ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس سب کچھ تو بنا بھی جیونا بڑا اوکھا ہے پر اس سب کچھ واسطے جیونا بھی کوئی جیونا نہیں یہ زندگی بھی کوئی زندگی نہیں پاون پوتر سری راگ دا ایک واک اس دش چار پہرے نے چار پدے نے انج کہہ لو چار پکھ نے جیون ان چاراں لئی ہی بتیت ہو رہے ہیں پرتھم کھانا اور کھانا دنیاوی منک دی صرف شریرک لوڑ نہیں من دی سوچ نہیں ہے من دا چنتن ہے وچاراں دچ کھانا ہے سوچنی دچ بھوجن ہے اٹھدا بیٹھدا پہ یاد بھوجن دی چل رہی ہے کھان دی چل رہی ہے لوڑ ہے یا نہیں سویرے تو شام تک
चिंतन इसे रही चलता है और चिंतन कर करके जद मनुख थके फिर पैनन दी सोचनी ते पैनन दी वक्ती पूर्ति तो बाद फिर मनोरंजन चाहिदा है। कोई ना कोई दुनियावी मनोरंजन जिस नाल मन परचे और फिर परिवारक खुशियां चाहिदियां ने, परिवारक सहमति चाहिदी है और परिवार विच अपना होना इंज समझे जैसे परिवार दी लोड़ है और परिवारक खुशियां मेरे नाल जो है संबंधित ने और फिर इस सब कुछ नूं हंडांदा भोगदिया होया मनुख चाहुंदा हुण मैं सौ जावां, हुण मैनूं चंगी नींद आवे, हुण मैनूं गूढ़ी नींद आवे। वाकई सब कुछ नूं मनुख दी जिंदगी चों कढ दईए तो आम दुनियादार दी मनुख दी जिंदगी च कुछ रह भी नहीं जांदा, कुछ बचदा भी नहीं। इस सब कुछ दी कशिश ना देख के माता तृप्ता जी ने एक दिन धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं साफ कह दिता, ऐ मेरे पुत्र नानक, जे तुसी किधरे घर रहो तां मैं सोहणे सोहणे पकवान बना के थानू खिलावां और थानू खांदे आया वेख के मैनूं खुशी होवे, मैनूं प्रसन्नता होवे। सिर्फ खाण दी ही गल क्यों, मैं कीमती तो कीमती कपड़े लियावां और खुद सिला के थानू पहनावां। सिर्फ इतना ही क्यों, सुंदर घोड़ी उस ते उत्ते मैं चांदी दी काठी पावां, लगाम दे सोना जुड़िया होवे और ऐसी सुंदर घोड़ी असवारी लई होर तरह दे मनोरंजन दे साधन तरह तरह दे मैं थोड़े लई मुहैया करां। फिर थोड़ा एक परिवार है, परिवारिक खुशियां माणो, फिर सुख दी नींद सोवो। ए उसनू आखिया जा रहा है जो हर वक्त सुख दी नींद देच है, हर वक्त आनंदी से जाते है, हर वक्त खेड़े ते खुशियां दे माहौल दे जो जी रहा है और जिसनू कहिंदे ने ब्रह्मानंद, जो हर वक्त ब्रह्मानंद दे माहौल दे जी रहा है, ये सारा सलाह मशवरा उसनू दिता जा रहा है। अक्सर ऐसा होया है कि जद किसे मनुख दी शिखर ते पहुंची है सुरत तो शिखर ते पहुंच के जो कुछ ओ बोले है ओ दुनियादार दे कन्ना तक नहीं पहुंचे है। थल्ले खड़े च खड़े हुए मनुख ने जो कुछ आखे है ओनू अनसुना कीता है उसने जो शिखर ते खड़ा है, जो बुलंदियां ते खड़ा है तो तालमेल नहीं बैठे। बहुत सारे अवतारी पुरुषां दा संसार दे च आगमन अजाई चला गया, अकारत चला गया। वो इतनी शिखर तो बोले, इतनी बुलंदी तो बोले, जो थल्ले खड़ विच खड़ा सी उसने सुनिया ही नहीं, उदे सिर दे उपरों लंघिया, उसका तालमेल ही ना बैठिया। उन्हें शायद एवं ही कोई गूंजदी हुई आवाज महसूस कर ली, खास नहीं है, और जो दो खड विच बैठ के खड भरे बोल बोलदा रहे उदे बोलां विच भी खड सी, जिथे उसका तन खड विच कलार सी उसकी बोलनी भी खड नुमा सी, बोल भी बड़े नीवे, बोल भी बिल्कुल ही खड, और उन्हां बोलां नूं कोई मन लवे तो इंज है जिवें जिंदगी नूं किसे खड दे गिराणा होवे, किसे गड्ढे दे सुटना होवे। तो इस तरह दे बोलां नूं परम पुरखां ने अणसुणा कर दिता, वांझी रह गई ए दुनिया उस महान बोलां तो, और इस तरह जगत दा पूर्ण तौर ते कल्याण अज तक नहीं हो सकया। नहीं ते कितने महापुरुष आए, कितने अवतार आए, लक्ष्य ते उन्हां दा एही सी कल्याण करना है, कल्याण करना है। खड विच जिंदगी बतीत करन वाला मनुख खड नाली मोह पा बैठा सी, गहरे गड्ढियां विच ही जीवन दा आदि हो गया सी। उन्हें शिखरां नूं छूणा ही और शिखरां तक पहुंचना ही ए
सुपना ही मन लिया, यह हकीकत नहीं हो सकता, यह वास्तविक नहीं हो सकता, इस वास्ते सोचना ही बंद कर देता। माता तृप्ता जी ने जद आख्या है, लाल जी कितने तरह तरह के पदार्थ ने, मैं बनावा तुसी खाओ, मैनू खुशी होवे तुसी आनंद माणो। तो सतगुरु कहंदे ने मां जी फिर थानू आनंद ही माणना चाहिदा है, ऐसा केड़ा पदार्थ है कि मैं नहीं छकदा। तृप्ता जी कहन लगिया, मैं ते मरदाने तो सुने है, कई कई दिन तक बार भोजन नसीब नहीं होंदा, कई कई दिन बिना खाणिया दे लंघ जांदे ने, और खाना पहल है, खाना अवल है। इतनी गल स्पष्ट है कि चार दिन दा जो भुखा मनुख है उसका मनोरंजन नाल संबंध टूट जाएगा, परिवारक खुशियां नाल संबंध टूट जाएगा। की पहनना है और किस ढंग नाल पहनना है, इसकी चाहत भी मिट जाएगी। हर तरह की चाहत नूं भुख खत्म कर देंदी है, भुख इको ही चाहत रखती है कि सिर्फ भुख मिटे, मेरी पूर्ति होवे। तो ए सब तो प्रथम है, भुखे मनुख लई मनोरंजन बेमैनी है, परिवार खुशियां बेमैनी ने, तरह तरह के वस्त्रां दा पहनना बिल्कुल बेमैनी है। तो खाना पहले है, और ए गल स्पष्ट है कि बहुत सारी दुनिया खाण लई जी रही है, सारे दा सारा पशु उना दी जिंदगी दे उत्ते पहनना है ही नहीं, उना दी जिंदगी दे उत्ते परिवार खुशियां है ही नहीं, सारे पशु खाण लई जी रहे ने, और की है। पशु जगत सिर्फ खाण लई जी रहे है, पंछियां दा जगत सिर्फ खाण लई जी रहे है, चौपाए जानवरां दा जगत सिर्फ खाण लई जी रहे है। अगर उना दी कोई सोचनी है ते कम करदी है तो सिर्फ खाण लई कम करदी है, और सारी भज दौड़ खाने दी तलाश है, रिजक दी तलाश है, खुराक दी तलाश है, और कुछ नहीं। और गजब दी गल है कि पशु खांदिया खांदिया रजदा भी नहीं, खाई जांदा है, खाई जांदा है, क्योंकि होर कोई लक्ष्य ही नहीं कि थोड़ा जिहा लक्ष्य नूं बदले। मनुख दे खाण दे नाल नाल कुछ पहनना भी है, पहनण दे नाल नाल कुछ मनोरंजन भी है, मनोरंजन दे नाल नाल कुछ परिवारक खुशियां भी ने। तो इस तरीके नाल मनुख दी जिंदगी थोड़ी वंडी जांदी है, बिखर जांदी है। पशु कोल सिवाय खाने तो होर कुछ नहीं, तो चूंके खाना ही लक्ष्य है ते खान तो इलावा होर कुछ है नहीं, इस वास्ते पशु अक्सर अधिक खा जांदे ने, ज्यादा खा जांदे ने, बहुत खा जांदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज माता तृप्ता जी नूं समझांदे ने, मां जी मैं तरह तरह दे पकवान रोज खाना, केड़े? तो आप कहंदे ने, सब रस मिठे मनिए, सुनिए सालोणे। मां जो मैं परमात्मा दा नाम मन लिया और मेरा भरोसा जो उस ईश्वर दे नाम विच जम गया है, बैठ गया है, ए मानो मैं सारी मिठास दा आनंद माण लिया है। ऐसा केड़ा मिठा पदार्थ है जिसका रस मैं नहीं माणिया? हकीकत है, एक सच्चाई है, जदों भी कोई मनुख इस मिठास दा आनंद जिंदगी च पहली दफा माणदा है, सब कुछ भिखा हो जाता है। दिखे मन फीका त्यागरी सखिए, नाम महा रस पियो। इस वास्ते परमात्मा दे नाम नूं रस नहीं आख्या, महारस, सारी मिठास जिस दे च है, और ऐसी मिठास जिसनूं किसी भी बैरूनी मिठास नाल तशबीह दे के समझाया भी नहीं जा सकता, प्रगट भी नहीं किया जा सकता। महाराज कहने जो मैं मन लिया है, मन दिया ही सारी मिठास अंदर प्रवेश कर गई है। कदी बगौर मुताला करिए, कथा दा सुनना, कीर्तन दा सुनना, धर्म मंदरां दे जाना, ध्यान साधना करनी,
सारा धर्म कर्म कांड अपनाना मैं इस वास्ते ही है कि किसी तरीके नाल मन परमात्मा नू परमात्मा करके मन लवे, और ते कोई मतलब ही नहीं है। और जिसदा मन जितना मनदा जाएगा अध्यात्मक तल ते उतना ही उन्नत होंदा जाएगा, उतना ही महान होंदा जाएगा, उतना ही अग्रसर होंदा जाएगा। तो साहिब कहंदे ने सब रस मिठे मनिए सुनिए साल होने सलूणा नमकीन, ए भी रसां दे चाह एक महान रस है। गुरु घर दे नियम संग इस नू सर्व रस कहंदे ने। दाल दे च पाईए होर रस, सब्जियां दे च पाईए होर रस। वख वख सब्जियां दे जिस ढंग नाल पांदे जा रहे हैं लूण अपना रस बनाई जांदा है, और इसे ही लूण नू एक पासे कर दो, हर सब्जी बेस्वाद, हर दाल बेस्वाद, हर पकवान बेस्वाद। ठीक ही नाम दिता है सर्व रस। बहुत सारे रसां दी खान है ए नमक। महाराज कहते जो उसकी उस्तत में सुनना हां और सुन सुन के जो आनंदित होना हां, और जेड़ा रस अंदर पैंदा है, मनो जगत दे जितने सलोने पदार्थ ने मैं सारे खा ले, मैं सारे चक ले, सारे पदार्थां दा आनंद माण लिया। सब रस मिठे मनिए सुनिए सालोने। जबान दे अनेका मुख्तलिफ रस मने गए ने। उदिच खट्टा है तुरशीन, खट मिठड़ा है, करकरा है। सतगुरु उसका भी जिक्र कर देने। खट

0: खट्टे तुरशीम खट मिठड़े ए सारे दे सारे ओ रस ने जो मैं अपने मुंह नाल परिपूर्ण परमात्मा दे नाम दा उचारण करदा। जितने खट मिठड़े रस ने, जितने तुरशीम रस ने है, सारे दे सारे रसां दा मैं आनंद उदो माण लैना जद रसना उस दे बोल बोल दिए, जद रसना उसका जप जप दिए। और इना सारे पदार्थां दे च मैं मसाले केड़े पाए ने, ना संगीत दा मैं मसाला पाया, सुनदा संगीत दे च, बोलदा संगीत दे च। तो जद बोलदा ते सुनदा मैं संगीत दे च, सुनना होर रसदायक हो जांदा है, बोलना होर रसदायक हो जांदा है। गुरु नानक दी ए गल अज दे युग दे ते बड़ी सार्थक आउंदी जा रही है कि कल युग में कीर्तन प्रधाना, हरि दी कीर्ति रागा नाल गायन करने और सुनने। जिथे सतगुरु ने कह दिता सी कल युग दे च ईश्वर प्राप्ति दा ए प्रधान साधन है, अज असी देखदे पया थकिया होया मनुख जहनी तौर ते शरीरक तौर ते, और बहुत सारे फिलसफे ए पढ़िया होया और अजोके ज्ञान विज्ञान नू ए समझदा होया, कॉलेज ते बड़िया बड़िया यूनिवर्सिटियां तो निकलिया होया, विश्व विद्यालयां तो निकलिया होया ए मनुख, अज इस नू अगर कीर्तन दी खुराक ना मिले ना दित्ती गई तो इस दे पागल होने दे च कोई देर नहीं है। ए प्रधान साधन है, संसार नू इसने बहुत कुछ जान लिया, इनू कथा राही जनान दी हुण कोई लोड़ नहीं है कि संसार की है। इते विद्यालयां चो सिक्के आ गए, पदार्थ की ने, संसार की है, इहदे च हुण वक्त जाया करना बिल्कुल बेमैनी है। हुण ते दसना चाहिए उस परिपूर्ण परमात्मा दे गुण की ने ते उना गुणा नू प्राप्त किवें करिए, ते जे किधरे उहदे गुणा नू रागां विच मिश्रित करके गा के प्रगट किया जाए तो उदे गुण ते रसदायक ने, राग होर रसदायक कर देंदे ने, संगीत ऐसा कम कर देने जैसे कुछ मसाले पा दिते गए ने ते भोजन होर स्वादी हो गया। तो अज दे इस कल युग दे दौर दे च गुरु नानक दी एह गल विश्वव्यापी सार्थिक आउंदी जा रही है कि कल युग में कीर्तन प्रधाना, जोगी भी कीर्तन करन लग पे ने, सन्यासी भी कीर्तन करन लग पे ने, साजां दियां धुनां चर्च दे च भी वजन लग पईआं ने, कवाली संगीत मस्जिदां दे च भी आ गया, दरगाहां दे च भी आ गया, काबियां दे च भी आ गया। तो एक गल ते स्पष्ट हो गई कि गाण नाल परिपूर्ण परमात्मा खुदावन ताला दे जिहड़े गीत ने, इनू संगीत दे ढाल के गायन करन नाल मन ते छेती असर पैंदा है और जल्दी सुकून मिलदा है। तो जिथे गुरु नानक दे कोलों ए रबाब दी धुन छिड़ी सी, गुरुद्वारियां तो उठ के अज मंदिर मस्जिद ते चर्चा तक भी पहुंची है और संगीत दे आसरे ते परिपूर्ण परमात्मा दे गीत गुण गायन करके परमात्मा नाल जुड़न दे वसीले लभ रहे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने इह ते मसाला है संगीत, भोजन नू होर स्वादी बना देंदा है, होर रसदायक जो है बना देंदा है। मारण नाद की है, छत्ती अमृत भाव एक जाको नदर करे, उस एक दा भाव, उस एक दी भावना, उस एक दी श्रद्धा जो अंदर पैदा हुई है, मन में 36 प्रकार दे भोजन छक ले ने। भोजन 36 प्रकार दा अक्सर मनिया जांदा है, श्रृंगार 16 प्रकार दा गिणन दे जो है आया। मन दियां हालतां विद्वान 9 मनदे ने, जिन्हों 9 रस भी कह देंदे ने, मन दे वख वख इस ढंग दियां जो है गिणतियां ने। साहिब कहिंदे 36 प्रकार दा जो खाना है मनो में छक लिया, मनो में रस मान लिया, जिहड़ी उसकी भावना अंदर उजागर हो गई है, अंदर जो है पैदा हो गई है। इस वास्ते बाबा होर खाना खुशी खुआरे, जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। मनुख जिंदा रहिंदा अगर खून चलदा रहे, और खून तां चलदा रह सकदा है अगर मुंह विच भोजन चलदा रहे, खुराक चलदी रहे। खुराक खून है, खून जिंदगी है, और खून चलदे ने तो मन चलदा है, विचार चलदे ने तो मुख गलते आ गई भोजन ते। तो साहब इस नु इंज तस्लीम कर देने कि है कुछ ऐसा भोजन जो खून विच विकार पैदा करदा है, है ऐसा कुछ भोजन जो शरीर विच रोग पैदा करदा है। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। वैसे तो एक दिन का खाना भी दस सकदा है कि जो कुछ मैं खादा है शरीर दे अनुकूल है कि नहीं, मन दे अनुकूल है कि नहीं। अगर कोई शरीर शास्त्री होवे, अगर कोई अपने मन नू पढ़न वाला होवे, ते उन्हें देखना चाहिए अज मैं खादा की है, क्योंकि खून दी गर्जिश ते खाण नाल है, विचारां दा दौर ते खाण नाल है, मन दे च विकार आ गए ने, तन दे च पीड़ा आ गई है, ये ते खाना दोषी है। और जे खाना दोषी है तो मनुख दोषी हो जांदा, विचार दोषी हो जांदे ने, शरीर रोगी हो जांदा। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी ए मनोत है कि बेशतर शरीरक रोग और मानसिक विकार इन्हां दा मूल कारण है आहार। अगर कोई मनुख अपने आहार दे प्रति सुचेत नहीं है, सावधान नहीं है, तो स्पष्ट है वो अपने रोगां प्रति और मानसिक विकारां प्रति सुचेत नहीं है। इस वास्ते फैसला कर देता है बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। ये ठीक है कि जीवन व्यापक है, वनस्पति दे च है, पशु पक्षियां दे च है, आदि मनुख प्रकृति दे हवाले सी, पहाड़ां दियां कंदरां च रहिंदा सी, रुखां तले रहिंदा सी, और प्रकृति ही जो उसनू खाण नू देवे ओही खांदा सी। इसका स्वयं का कोई चुनाव नहीं सी, क्योंकि मनुख अजे सभ्य नहीं होया सी। प्रकृति ने जो फुल दे दिते, फल दे दिते, वो खा लिया। पर जब फुल ना मिले, फल ना मिले, तो फिर पशुआं दा शिकार। इस ते जीवन बतीत होंदा रहा, जिंदगी इस तरह लंघदी गई, आखिर सहजे सहजे मनुख सभ्य होया। सभ्य तो मुराद सभा दे च बैठन दी जाच आई, सभा नू समझन दी जाच आई, सभा दे च अपने आप नू पेश करन दा ढंग इस नू आया। और जो विचार मैनू नहीं चंगे लगदे, उस सभा नू भी नहीं चंगे लगदे। सभा मैनू कैसी चंगी लगदी है और सभा नू मैं किस ढंग नाल चंगा लग सकदा, इस सोचनी दा जदों जन्म होया और इस सोचनी दे अनुकूल जद मनुख ने अपने आप नू ढा लिया, तो उसनू आख्या गया सभ्य। तो इसकी सोच दे च ए भी गल आई कि मैथों घट तो घट किसे नू दुख पहुंचे, चोट पहुंचे, तो मेरे आहार दे च भी किसे नू चोट ना पहुंचे, मेरी खुराक दे च भी किसे नू चोट ना पहुंचे। वैसे ते बनस्पति दे च भी जी, दाणियां दे च भी जी, और पहला समग्र व्यापक जीवन पानी, पहला पानी जीव है। जित हरिया सब कोय, अहिंसक ते मनुख हो नहीं सकदा, नहीं ते पानी दा त्याग करना पेगा, वनस्पति दा भी त्याग करना पेगा, दाणिया दा भी त्याग करना पेगा, क्योंकि जे ते दाने अन्न के जिया बाज न कोय। बस इतनी सोचनी अंदर जन्म लवे कि मेरे आहार तो दूसरे नु चोट घट पहुंचे। पशुमान दा कुछ ऐसा जगत भी है जिथे मन विकसित हो गया है और मानसिक पीड़ा महसूस होंदी है, और जिथे मानसिक पीड़ा ज्यादा महसूस होवे उस पशु नु भी मनुष्य जैसा समझना चाहिदा है, मनुख जैसा समझना चाहिदा है। पर जिथे मानसिक सोचनी नहीं, मानसिक पीड़ा नहीं सिर्फ शरीर के ही पीड़ा है तो वह बनस्पति जैसे ने वह दाणिया जैसे ने क्योंकि दाणिया नू भी जद बुनदे आ तड़पदे वह भी ने दाणिया नू भी जद बुनदे आ उछलदे ने तड़पदे ने आवाज भी करदे ने तिड़ तिड़ करदे ने यह इन्हां दे चीखण दी आवाज है तड़पदे हुए किसी पशु नू वेख के अगर मानसिक पीड़ा महसूस होवे तो उसनु तड़पदे हुए दाणिया नू वेख के भी पीड़ा महसूस होनी चाहिए दर्द महसूस होना चाहिए फिर भी खुराक खान लगया उदी ए सोचनी होवे कि मेरे आहार तो दूसरे नू घट तो घट ही चोट पहुंचे ताकि ऐसा आहार मेनू चोट ना पहुंचावे जिस आहार ने दूजिया नू चोट पहुंचाई है ए आहार इसनू भी चोट पहुंचाएगा एदे तन नू रोगी करेगा एदे मन नू पीड़त करेगा करीबन करीबन 90% मनुख दी अज खुराक ऐसी है दूजिया नू चोट पहुंचा के हासिल कीती जा रही है तो चोट पहुंचा के हासिल कीती गई खुराक खुराक भी चोट पहुंचाएगी खुराक भी जरब करेगी इस वास्ते गुरु नानक दा ए फैसला बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार हे बाबा हे मेरे मित्र हे सियाने सुचेत रह तेरे शरीरक रोगां लई तेरी मानसिक पीड़ा लई 90% ते जिम्मेवार है तेरा आहार तो जो आहार दे प्रति सुचेत नहीं वो विचार दे प्रति सुचेत नहीं हो सकता जो आहार दे प्रति सुचेत नहीं वो अपने शरीर दे प्रति भी सुचेत नहीं हो सकता और जो शरीर ते मन दे प्रति सुचेत नहीं उनु सभ्य नहीं कहा जा सकता असभ्य मनुख है अजे उसनु सवाद बैठने की जांच नहीं आई अजे उसके अंदर पूर्ण तौर ते मनुखता प्रगट नहीं हुई तो प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज अपना उपदेश अपना संदेश खाने तो आरंभ करते ने फिर दूसरा आप पहनने का उपदेश देंदे ने
1: रता पहनण मनुरता सुपे दी सतदान नीली सिहाही कदा करनी पहरण पैर ध्यान कमर बंद संतोख का धन जो बन तेरा नाम बाबा होर पैनन खुशी खुआर जित पैदे तन पीड़िए मन में चले विकार खान पीन तो बाद पहनन दी मनुख सोचता है और ये सिर्फ मनुख ही सोचता है या इंज कह लो पहनन तो ही मनुखता आरंभ होंदी है पहनन बारे पशुआ ने नहीं सोचे पंछिया ने नहीं सोचे धन गुरु नानक देव जी महाराज ते कहंदे ने विस्माद नांगे फिरे जंत इन्ना नंगे पशुआ नू देख के मैं ते विस्मादमयी हो जांदा विस्मय हो जांदा इना दे अंदर पहनन दा ख्याल नहीं पैदा होया ए इस तरह दे नाल नगनता दी प्रदर्शनी कर रहे ने एक मासूम बच्चा नवजायद बच्चा उस दे अंदर भी अजे पहनन दा भाव नहीं पैदा होया ए गल वखरी कि चीथड़िया विच कपड़िया विच मां बाप उस नूं लपेट के रखदे ने पर पहनन दा भाव अजे उस दे अंदर नहीं पैदा होया इस वास्ते कह देंदे ने ए मासूम बच्चा अजे असभ्य है सभ्यता ते बुद्धि दे विकास दे नाल नाल ही हुंदी है तो अजे बौद्धक विकास नहीं होया ए बच्चा मासूम इस तरह नगन निर्दोष है जिस तरह के पशु नगन निर्दोष ने मनुखता नहीं आरंभ हो सकी मनुखता सोचण नाल आरंभ हुंदी है और पशु सोच दे तो लाजमी वो पहनण लई भी सोच दे और नगनता उन्हां नूं महसूस होंदी या इंज कह लो मनुखता इत्थों ही आरंभ होंदी है जद नगनता महसूस होण लग पे यही कारण है कि जिस दे अंदर मनुखता ना होवे साडी भारतीय परंपरा दे मुताबिक कह देंदे ने ये मनुख बहुत नंगा है बिल्कुल नंगा है। ਨੰਗੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਜੇ ਸਿੰਦਰ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਢਕਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਆਜ਼ਾ ਢਕਣੇ ਨੇ, ਮੈਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਢਕਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ੀਲ ਸੰਜਮ ਦੇ ਚ ਰਹੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸ਼ੀਲ ਸੰਜਮ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵੇਗ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਜਹਿਨ ਨਗਨਤਾ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਗਨਤਾ ਭੜਕਾਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਗਨ ਹੈ, ਨਗਨ ਹੈ। ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਢਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਢਕਣਾ, ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਰੋਗੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵਿਕਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਾਣੇ ਤੇ ਜੋ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾ ਭੜਕੇ, ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ, ਨਗਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਪਰੀਤ ਨਗਨਤਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਨਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਗਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ, ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰੋਗ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਕੁਝ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਨਣਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪੈ ਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਹੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਹ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਤਨ ਵਿਚ ਖੁਆਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਬ ਦੇਹ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਜਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਸੰਜਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਮਰਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਉਥੇ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਨੇ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਆਵਣ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇਗਾ, ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ। ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਢਕਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਸਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਔਸ਼ਧੀ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਨਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪਹਿਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਨਣਾ ਹੀ ਪਹਿਨਣਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਢਕਣ ਲਈ ਸੀ, اسلام نے ایسا پردہ دے دیتا، ایسا ڈکیا، منک غائب ہو گیا، پردہ ہی پردہ رہ گیا، کپڑا ہی کپڑا رہ گیا، منک نہ دسیا۔

लेकिन दूसरे दिन जब सादा लिबास पहन के दो मिस्से प्रसादे और प्याज दा गंडा थाल विच रख के बिना दासियां तो बिना रथ तो पैदल जब जगत माता गंगा जी पहुंचिया ने अजे वे कदमा दी दूरी है बाबा बुढ़ा जी दी रसना तो निकलिया मां नू वाकई फिक्र आउंदी है बच्चे नू भुख लगी है कल कुछ होर आखिया सी अज कुछ होर आख रहे ने एकदम भज्जे हो गए थाल ले लिया माता जी तो मंजे ते बैठ गए ने मिस्सा प्रशादा तोड़े है बुरकी मूह च पाई है प्याज दा गंडा मंजे दे पावे दे ते रख के ज्यों मुठ नाल तोड़े है आखे ओ लाल मां तेरी कुख तो जन्म लवेगा जो दुष्टां दे सिर इंज बनेगा जिवें मैं इस प्याज नू तोड़े है। ए वाक प्रगट होया दल भंजन गुरु सूरमा वड योधा बहु परोपकारी धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा जन्म आप दी कुखों होया मीरी पीरी दे मालक तलवार दे धनी और शस्त्रां दे धनी सूर वीरता जिन्हां दे रोम रोम दे चों जो है प्रगट होंदी सी और जिन्हां दे चेहरे तो भक्ति भाव हर वक्त प्रदर्शित होंदा सी ऐसे मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा जन्म वक्त दे एक महान फकीर गुरु घर दे एक महान आशिक संत बाबा बुढ़ा जी दे आशीर्वाद नाल होया पर इस आशीर्वाद दे पिछे एक बहुत वड्डी कहानी छुपी हुई है कि किसे भी संत कोल आना है दर्शन देण लई नहीं दर्शन करण लई इहदे च कपड़ियां दा बहुत वड्डा योगदान है कपड़े कुछ ऐसे होंदे ने जो मन दे अंदर ख्याल पैदा करदे ने मैं दर्शन देने ने और कपड़े कुछ ऐसे ने जो पैदा करदे ने ख्याल मैं कुछ भी नहीं मैं ते दर्शन करने ने मैं ते दूजे दे जो है दर्शन करने ने। इस संबंध च एक होर भी बड़ी सुंदर गाथा है भगत कबीर जी दे डेरे एक ऐसी पनहारी सी जो गंगा तो रोज पानी भर के ल्यांदी है मटकियां दे राहे और सारा दिन प्यासियां दी प्यास बुझांदी है ठंडे जल नाल रसना नाल परमात्मा दा नाम जपदी है अपने मन नू शीतल करदी है ते दूजियां नू शीतल पानी पिला पिला के प्यास बुझांदी है अगलियां दे तन शीतल करदी है। इस तरह मन दे तल ते उसदे सिमरन चलदा रहिंदा है तन दे तल ते उसदी सेवा चलदी रहिंदी है सेवा सिमरन दी ए मूर्ति अपना जीवन कबीर जी दे डेरे च इस ढंग नाल बतीत कर रही है। लेकिन एक ऐसी घटना घट गई कबीर जी दे कुछ चेले शिवरात्रि वाले दिन गंगा तट ते की देखदे ने कि वक्त दे बादशाह दी बेगम सिकंदर लोधी दी बेगम हिंदू यात्रियां नू देखण लई आई है कि इत्थे आके की करदे ने किस तरह दे धार्मिक रस्मो रिवाज नू ए प्रचलन करदे ने ए अपनांदे ने ए देख रही सी जिथे ओ धार्मिक रस्मो रिवाज लोकी निभा रहे ने कर रहे ने देख रही है उथे कबीर दे चेले सिकंदर लोधी दी बेगम नू देखदे ने और मैज इस वास्ते देखदे ने कि इतने कीमती कपड़े और जर्री दा कम है मोती जड़त ने किधरे किधरे नीलम भी चलम चमकदे पैने बस्त्रां दे चों कपड़ियां दे चों। एकदम ख्याल आया उस पनहारी दा जो सारा दिन डेरे दे प्यासियां दी प्यास बुझांदी है ठंडे जल नाल गंगा तो भर के ले जांदी है सारा दिन जिसदी रसना ते सतनाम दी धुनी चलदी है कबीर पंथियां नू सतनामी कहंदे ने पर उसदे बस्तर लीरां लीरां ने उसदे कपड़े ते बिल्कुल फटे हुए ने मन दे ते
एक शक दा बोझ पै गया। ते शक ही सब तो वड्डी मैल है, संसे जियो मलीन है, कित संजम तोता जाए मेला हिरदा कौन। जो परमात्मा दे प्रति शक नाल भरे होया है, निर्मल हिरदा कौन जो परमात्मा दे प्रति विश्वास नाल भरे होया है। जितना किसदा विश्वास वद्दा जा रहा है उतनी निर्मलता वद्दी जा रही है, और जितना किसे दा संदेह वद्दा जा रहा है मैल वद्दी जा रही है। और संदेह ही संदेह रह जाए, विश्वास रह ही ना, ऐसा मनुख दुष्ट हो जाता है, ऐसा ही मनुख जालिम हो जाता है, ऐसा ही मनुख चोर हो जाता है, ऐसा ही मनुख दुराचारी हो जाता है, ऐसा मनुख महान जालिम हो जाता है, क्योंकि परमात्मा दे प्रति संदेह ही संदेह है। और ऐसा मनुख पुनीत हो जाता है, भगवंत दा रूप हो जाता है, भरोसा ही भरोसा है, संदेह तो है ही नहीं, केवल भरोसा है। ऐसा मनुख अठे पैर समाधि लीन होंदा है, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगट आया। ऐसा मनुख जो भरोसे ते भावना नाल भरिया होया है, अठे पैर समाधमई होंदा है, समाधि लीन होंदा है, अठे पैर प्रभु नाल जुड़िया होंदा है, निर्मलता दी खान होंदा है। ओ निर्मलता दी मूर्ति कबीर दे चेले कबीर दे अगों फरियाद करदे ने, साडे अंदर संदेह पैदा हो गया, की करिए इस पनहारी नु वेख के और सिकंदर लोदी दी बेगम नु वेख के, इन्ने कीमती कपड़े, इतना कीमती लिबास, पता नहीं उसकी जबान चो कदी परमात्मा दा नाम निकलिया भी है कि नहीं। तो कबीर दे बड़े दो कीमती श्लोक ने इस संबंधित, कबीर दे श्लोकां दी बाणी आप कहने न, कबीर हैंगे बाहन सघन घन छत्रपति की नार, तासो पटंतर ना पुजे हर जन की पनेहार। जो हरी जन दी पनहारी है, सारा दिन हरी दे जना नु पानी पिलांदी है, सेवा करदी है, इसदे कपड़े इतने महान ने कि उस बादशाह दी बेगम दे कपड़े इस कपड़ियां दे सामने तुच्छ ने। तासो पटंतर ना पुजे हर जन की पनहार। तर्क खड़ी हो गई, भगत जी वो कपड़े मखमली ने, नीलम जड़त ने, जर्री दा कम होया उना ते, ए कपड़े खद्दड़ देने, लीरा लीरा ने, टाकिया ने, थां थां तो पाटे हुए ने, सिले हुए ने, इते चीथड़े ने, इन्हां नूं आप कहिंदे हो इतने महान ने कि उस बादशाह दी बेगम दे जिहड़े बस्तर ने बिल्कुल तुच्छ, बिल्कुल मामूली। तो कबीर इसका बड़ा सुंदर जो है जवाब देंदे ने, कबीर निरप नारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मान, मैं हरी दी चेरी नूं मान क्यों दे दिता, मैं इना चीथड़िया दी इतनी उपमा क्यों कर दिती, मैं इतने सादे लिबास दी इतनी महिमा गायन क्यों कर दिती, और इतना कीमती लिबास, जर्री नीलम दा कम जिस दे च, मैं उसनु भंडिया क्यों, मैं उस दी निंदा क्यों की थी। दूजिया दे तर्क अजे जबान ते नहीं आए, लेकिन फिर भी कबीर जवाब दे रहे ने, समझा रहे ने, कबीर निरप नारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मान, ओ मांग सवारे विखे को ए सिमरे हरि नाम। इदे सादे कपड़िया दे च हरि दा नाम है, उदे भड़कीले लिबास दे च प्रदर्शनी है, वाशना दी नुमाइश है, उदे कपड़िया नू देख के दूजिया दियां वाशनावां भटक दियां ने, पड़क दियां ने, प्रगट होंदियां ने। इहदे सादे लिबास नू वेख के लोगां दी जबान ते सतनाम, सतनाम दा जप चलदा है। जिन्हां कपड़िया नू देख के भगवान चेते आवे मैं उसकी उपमा करा, या जिन्हां कपड़िया नू देख के शैतान दा जो है चेता चले मैं उहदी महिमा गायन करा। वाकई ऐसा है लिबास जिन्हू वेखदियां ही शैतानियत प्रगट होंदी है, शैतान दे दर्शन होंदे ने,
और है ऐसा लिबास जिन्हों वेखदिया ही भगवान दे दर्शन होंदे ने, प्रभु दे दर्शन होंदे ने। खान पीन दी सावधानी तो बाद जो मनुख अपने वस्त्रां दे प्रति सावधान नहीं, धर्म दी चरम सीमा नू छू नहीं सकेगा, बुलंदियां नू छू नहीं सकेगा। या इंज कह लो, जद भी किसे दे पैर बुलंदियां दी तरफ रागब होंदे ने, उदे पहरावे दी सादगी आनी आरंभ हो जाती है, उस दे पहरावे दी कोमलता आवनी जो है शुरू हो जाती है। मनुख दी खान पीन दी कमजोरी तो बाद ये दूसरी कमजोरी है। खाना पीना जबान दे रस करके बेमर्यादा चला जाता है, पहनना वाशना करके और अहंकार करके अपने आप नू प्रगट करना है। और जैसे कोई कपड़िया दे राही अपने आप नू प्रगट करता है, उसी तरीके नाल दूसरियां दियां वाशनावां जो है प्रगट आउंदियां ने, और ये पहनना धर्म दी दुनिया दे च जुर्म हो जाता है। जगत दा तमाम फकीरी समाज, साधु समाज, संत समाज जिस सादे कपड़िया विच लिपटिया होया है, तो इस दे पिछे कोई फोका कर्म कांड नहीं, इस दे पिछे एक बहुत गहरी सोचनी है, एक लंबी विचारधारा है कि मैं ऐसा पहना कि मैं छुप जावा, और मैं ऐसा पहना कि मैं प्रदर्शित ना होवा, मैं ऐसा पहना कि दूसरे दियां वासनावां भी प्रदर्शित ना होवा। अगर किसी दे कपड़ियां दे राही किसी दी वासना प्रगट हो रही है, तो उदा पहनना बिल्कुल धर्म दी दुनिया च जुर्म है, पाप है। भावे कानून दी दुनिया जुर्म ना होवे, लेकिन धर्म दी दुनिया दे च ए पाप है, इते गुनाह है। इदा पहनना ही दूजियां दी वासनावां नू भड़का रहा है, ते भड़किया होईयां वासनावां किसी वक्त भी किसी दी इज्जत किसी दी असमत लुट सकदियां ने। मौजूदा दौर दा माहौल ऐसा है कि चारों पारे पासे नगनता और अर्ध नगनता दे राही वासनावां नू प्रदर्शित करन दा एक महान प्रगटावा जो है चल रहा है चारों पासे, और इसे नू देख के गुरु नानक दी जो है रसना तो निकल गया सी, इते कल युग दा भाव है। नारद नाचे कल का भाव, जति सती कहे राखे भाव। मन नारद होवे ते चारों पासे नगनता दी प्रदर्शनी होवे, तो फिर जति ते सती लई थां बनानी बहुत औखी है, अपने पैर टिकाने बड़े औखे ने। पहनन दे संबंध च धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ए महान उपदेश इस प्रकार है, रत्ता पहनन मन रत्ता सुपे दी सतदान। ए जो मन परमात्मा दे नाम दे च लीन हो गया, रत्ता गया, मनो में एही लाल रंग दी पोशाक पहनी है, और लाल रंग दे गूढ़े कपड़े पहनन दा हुण चाव नहीं रहा। सुपे दी सतदान, और एही मैं सफेद रंग दे कपड़े पा ले ने, जो दानी बिरतियां पैदा हो गई ने, परोपकार दा मादा पैदा हो गया। नीली स्याई कड़ा करनी पैरन पैर ध्यान, जो मन विच अपने विकारां दे प्रति रोस पैदा हो गया, एही मैं काले रंग दे कपड़े पहने ने। सारी दुनिया विच अज भी रोस दा रंग काला मनिया जांदा है, और वाकई जद किसे नू अपने गुनाह अपने विकारां ते रोस पैदा हुंदा है, अंदर काले रंग दी धारी जो है बनदी है। महाराज कहंदे मैं एही काले रंग दे कपड़े पहने ने, और जद उन्हां विकारां नू कट्टण दा ख्याल पैदा हो जाए, साहिब कहंदे एही मैं नीले रंग दे कपड़े पहने ने। नीली स्याई कदा करनी पैरन पैर ध्यान, पैरां दी सोहणी जुत्ती मैं केड़ी पाईए तिल्लेदार, जो ध्यान नू हे प्रभु तेरे मार्ग ते तोरे है। सोहणी जुत्ती पाई हुई है, पैर भटके हुए ने, पैर गलत मार्ग ते चले हुए ने, तो कहा जा सकदे ते पैरों नंगा है। जुत्ती उस दे पैर दे च है जिस दी सुरत ध्यान दे मार्ग ते प्रभु दे मार्ग ते है चल रही है। महाराज कहंदे ने पैरन पैर ध्यान, ओ जो ध्यान तेरे विच जुड़िया होया है ते मैं जो चल रहा, यही मैं सोहणे तिल्लेदार पैरां दे च जुत्ती पहनी हुई है। कमर बंद संतोख का धन जो बन तेरा नाम, कमर कसा मैं संतोख दा कीता होया है। ते हुण सब तो वड्डी
प्रदर्शनी दी जिड़ी वस्तु है ओ है धन ओ है जोबन। महाराज कहते मेरे कुल तेरे नाम तो बिना और कुछ नहीं, तेरा नाम ही मेरा जोबन है और तेरा नाम ही मेरा धन है। वाकई नाम दे मिलदे हां जो एक स्वप्न उजागर आउंदा है और नाम दे मिलदे हां जो अंदरों एक बादशाहत पैदा आउंदी है, उसे दिन ही पता चलदा है धन किसनू कहंदे ने जोबन किसनू कहंदे ने। सतगुरु देव जी महाराज कहंदे ने सारा जोगन ते सारी धन संपदा फिके पै जांदी है जिस दिन ए असली धन मनुख नू जो है प्राप्त आउंदा है। धन जोबन तेरा नाम बाबा और पैनन खुशी कुवार, जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकार। हे सियाणे मनुख ओ पैनना जो खुआरिया नू जन्म देवे मन विच विकारा नू जन्म देवे, ऐसे पैनने नू एक पासे कर। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ए मूल संदेश उपदेश खान पीण पहनण दे बारे जिस दिच बहुत वड्डी सच्चाई है जो इस तल ते संजमी नहीं, ओ प्रमात्मा दे मार्ग दा पांदी भी नहीं।

ঘোড়ে পাখর সোয়নে সাখতে বুঝন তেরি বাট তরকস তীর কমান সাঙ্গ তেগ বন্দ গুণ ধাত वाजा नेजा पतसों परगट करम तेरा मेरी जात बाबा और चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़िए तन पीड़िए मन में चले विकार। एक ऐसा पावन पवित्र गुरु नानक देव जी महाराज का महावाक है जिस विच जीवन नू बुलंदियां ते किवें लै जाइए और जीवन दे विचकार रुकावटां केड़ियां केड़ियां ने इहदी पूर्ण तौर ते सूझ समझ वक्त दे अवतारी पुरुष धन गुरु नानक देव जी महाराज ने कराई है। इतनी गल ते स्पष्ट है प्रथम शरीर है फिर मन है फिर आत्मा है। सारे दा सारा पशु जगत शरीरक तल ते जी रहा है लोड़ा दे तल ते जी रहा है पर मनुख लोड़ा दे नाल नाल शरीर दे नाल नाल मानसिक तल ते जी रहा है ते मन दियां अपनियां कुछ कामनावां ने मन दियां अपनियां कुछ इच्छावां ने और इना कामनावां ने बहुत वड्डे पसारे नूं जन्म दिता है। इतना जीवन वड्डा ने जितना पसारा वड्डा हो जांदा है और इस नाल मानसिक तनाव वध जांदा है। इस वास्ते मनुख सिर्फ शरीरक तल ते ही रोगी नहीं मानसिक तल ते रोगी है। शरीरक तल ते ते शायद कोई कोई रोगी होवे पर मानसिक तल ते ते सतगुरु कहिंदे ने जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। तो प्रथम शरीर दे तल ते मनुख सावधान होवे सतगुरुदेव जी महाराज खान पीण दा संजम दसते ने और साफ कहंदे ने बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। ओ खाना जो वक्ती तौर ते खुशी देवे ते बाद विच विकार पैदा करे ओ खाना जो वक्ती तौर ते रस देवे पर बाद विच बेरसी नूं पैदा कर देवे और शरीर नूं रोगी कर देवे सतगुरु उस तों जो है वरजदे ने। इह गल वखरी है कि शरीर अलग अलग ने कोई वाई प्रधान शरीर है कोई कफ प्रधान शरीर है और कोई पित्त प्रधान। अपने शरीरक सुभाव नू वेख के खाणियां प्रति जो सुचेत हो जांदा है वो शरीरक पीड़ा तो बच जांदा है मानसिक विकार तो बच जांदा है और जैसे शरीर दे खाण पीण दा मसला हल होवे एकदम पहनण दी दुनिया आरंभ हो जांदी है। पर पहनना सिर्फ प्रदर्शनी वास्ते होवे पहनना सिर्फ नुमाइश होवे पहनना अपनी बिरती नूं भी बार मुखी करे ते दूजियां दी बिरती नूं भी अपनी तरफ खिंचे ऐसा पहनना भी मानसिक विकारां नूं जन्म देंदा है। तो सतगुरु उस तों भी सानूं वरजदे ने बाबा होर पहनण खुशी खुआर जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकार। अगां चल के मेरे पातशाह मन दी उस अवस्था का जिक्र करते ने जद तन तो मनुख निश्चिंत हो जाए ते मन बड़े पुरजोर ढंग नाल मंग करन लग पैंदा है। और यही एक ऐसा शब्द है जिस दे चार रहाव ने चार ठहराव ने ए अपनी तरह दा इंज कह लो एक महान शब्द है जिस दे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार रहाव ने। चार रहावां देच भाव चार भाव सतगुरां ने साडे सामने रखे ने प्रथम शरीर
और शरीर दे खान पीन दा मसला हल होवे तो फिर पहनना, और पहनना भी ऐसा हो जाए कि अपने आप नू नुमाइश करन दा चाव पैदा होवे ते दूजियां दी बिरकती नू भड़कान दा मसला खड़ा होवे। साहिब कहिंदे नहीं, ए भी खुआरियां नू जन्म देंदा। खान पीन पहनन दे मसले तो जैसे मनुख निश्चिंत हुंदा है तो फिर मन दी दुनिया सामने आउंदी है। कहिंदे ने पशु सुखी ने क्योंकि अक्सर प्रकृति उन्हां दीआं शरीरक लोड़ां दी पूर्ति कर देंदी है, पर ए जो मन है मनुख दा ए ऐसा है कि शरीरक लोड़ां दी पूर्ति हो जाए और जितनी ज्यादा हो जाए ए उतना ही भयंकर रूप विच मंग करन लग पैंदा है। इत्थे मनुखी मन ने बड़े भुलेखे खादे ने और मनुख ने बड़े संपन्न तरह दे मनोरंजन दे साधना नू जन्म दिता है। जेड़े जेड़े देश जितने अमीर ने, जेड़े जेड़े घराने जितने ज्यादा संपन्न ने, देखे उत्थे मानसिक बेचैनी उतनी ज्यादा है। सतगुरु आप भी कहंदे ने कि वडे वडे जो दीसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। महाराज कहंदे ने दुनिया दे तमाम वड्डे मनुखां ते निगाह मारनी। वड्डे मनुख कौन? जिन्हां कोल धन संपदा ज्यादा है। को ना वड़ा माया वड्याई, गुरबाणी दी व्याख्या गुरबाणी जो है कर दी है, ए मनुख वड्डा नहीं, ए वडपणा धन ते खड़ा है, ए वडपणा संपदा दे खड़ा है, ए वडपणा प्रभुता ते खड़ा है, सता ते खड़ा है। और जितनी ज्यादा धन संपदा है उतनी ज्यादा प्रभुता है, जितनी ज्यादा सता है उतनी ज्यादा प्रभुता है, और जितनी ज्यादा प्रभुता है महाराज कहंदे ने उतना ही वड्डा है, और जितना ज्यादा वड्डा है उतनी ही ज्यादा चिंता है। बड़े बड़े जो दीसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। इसनू एक होर ढंग नाल भी धन गुरु नानक देव जी महाराज ने खोले है, जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे भरमंता। जिसको ले धन संपदा ज्यादा है उथे अधिक चिंता है, पर जिथे लोड़ जोगा भी नहीं उथे भटकना है, उथे मन विच भरम ने और उथे बहुत धावना है, उथे बहुत भटकना है। एक थां ते भटकना है और उस भटकन विच भुलना ने। इस वास्ते आम कह दिता है कि गुनाह गरीबी तो जन्म लेंदे ने, गरीबी मुफलसी गुनाहां दी जननी है, गुनाहां दी मां है। मजबूरियां मनुख नूं रसातल विच ले जांदियां, धरातल दे जह ले जांदियां ने। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने जिथे लोड़ां दी पूर्ति नहीं हो रही उथे ते भटकना है, और जिथे लोड़ां दी पूर्ति तो भी अधिक है उथे चिंता है, बड़ी भयंकर जो है चिंता है। जितने संपन्न देश ने उतने ज्यादा चिंतातुर ने, और जितने संपन्न घराने ने उतने ज्यादा चिंतातुर ने, और जितने ज्यादा चिंतातुर ने उत्थे उतने ज्यादा मनोरंजन दे साधन मुहैया किते जांदे ने, उपलब्ध किते जांदे ने मनोरंजन। गरीब अजे जिस दियां तन दियां ही लोड़ां दी पूर्ति नहीं हुई, अजे तन दा ही मसला हल नहीं होया, अजे तन ते चीथड़ा नहीं है, अजे पेट दे च रोटी नहीं है, इनू मनोरंजन नहीं चाहिए। शरीर सब तो अगे है, अजे शरीर दा मसला हल नहीं होया तो मन पिछे खड़ा है, मन नंबर दो ते खड़ा है। जिस वक्त भारत संपन्न सी और ईरानियां अफगानियां ने तुर्की लोगां ने इनू सोने दी चिड़िया आख्या, उस जमाने च इस देश दे घर घर दे संत पैदा हो रहे सन, देवते पैदा हो रहे सन, देवियां पैदा हो रही सन, धन संपदा बहुत सी, शरीर दा मसला हल हो गया सी, मन दे मसले नूं परमात्मा दे नाम नाल हल कर रहे सन, प्रभु चिंतन नाल हल कर रहे सन। चाहे थे राजकुमार सिद्धार्थ होवे, चाहे महावीर होवन, आखिर राजघरानियां दे फरजंद सन,
इन्हां ने भी अपने मानसिक मसले प्रभु चिंतन नाल हल कीते, आत्म अभ्यास नाल जो है हल कीते। करीबन करीबन इस देश दे राज घरानियां दे चों धर्म दी सुगंध फैली, धनाढ़ मनुख प्रभु दे मार्ग ते चले, और जब धनाढ़ चल पैन सताधारी चल पैन तो दूसरा वर्ग उन्हां दे पिछे चल पैंदा है, स्वाभाविक है। अक्सर छोटा वड्डे दी नकल करता है, निर्धन धनवान दी रीस करता है। तो जो थोड़े जिया भी तलते पछड़े सन, दरम्याने सन, उन्होंने राजघरानिया दे ए जो राजकुमार सन इन्हां दी नकल की थी, राजिया दी नकल की थी, राजे जोगी बन रहे ने, राजकुमार संत बन रहे ने। तो इस देश दे ऐसी हवा चली, घर घर देश देवी, घर घर देश देवता, गली गली दे संत, और आज तक वो पुरानी हवा दे कुछ झोंके मौजूद ने कि सारी दुनिया च अज भी कहंदे ने हिंदुस्तान एक धार्मिक देश है, हिंदुस्तान देवी देवतावां दा देश है, हिंदुस्तान गुरु पीर पैगंबरां दा देश है, जोगियां दा देश है, आत्म ज्ञानियां दा देश है। पर ए आत्म ज्ञानियां दा देश सी, अज नहीं। ए ऋषि मुनियां दा घराना सी, अज नहीं। संपन्न लोगां ने अपना पूरा समा, अपनी पूरी शक्ति आत्म अभ्यास दे खर्च की थी, तो सहजे सहजे की होया, धन दी फिक्र ना की थी, संपदा दी फिक्र ना की थी। संत पैदा होंदे गए, ऋषि मुनि पैदा होंदे गए, अवतार पीर पैगंबर पैदा होंदे गए, तो धन संपदा दी ते फिक्र ना की थी, मुफलसी भी पैदा होंदी गई, और मुफलसी चरम सीमा ते पहुंच गई। और अज असी देखदे हां कि हिंदुस्तान अज उन्हां देशां दी तरफ निगाह करदा है जिथे संपन्नता है, ते जिथे संपन्नता आ गई है वो आत्म अभ्यास लई हिंदुस्तान दे दरवाजे खटखटा रहे ने, वो योगियां दे आश्रम लभ रहे ने, वो आत्म अभ्यास दे केंद्र लभ रहे ने। संपन्न हो गया अमेरिका, योगी शब्द दी उत्थे महिमा वध गई है, योग दी महानता वध गई है, आत्म अभ्यास दी उमंग ते तरंग वध गई है, लेकिन धन संपदा दी तरंग ते उमंग हिंदुस्तान दे च वध गई है। अज धन दी खातर इस देश दे धर्म नू छोड़िया जा सकदा है, पर उस देश दे च ऐसा है कि धर्म दी खातर धन नू छोड़िया जा सकदा है। संपन्न घरानियां दे बच्चे हिपी बन गए, छोड़ गए सारे ऐशो आराम नू, हर तरह दे सुख नू, और उन्होंने बुलंद बांग कह दिता आत्मक चैन चाहीदी है, सुकून चाहीदा है, शांति चाहीदी है, प्रभु चाहीदा है, आत्म प्रकाश चाहीदा है। तो खैर जैसे जैसे शरीर दा मसला हल होवे, मन बड़े भयंकर रूप दे सामने आउंदा है, और शरीर पहले इदा मसला पहले हल करना पैंदा है, और इदा मसला है खाना पीना पहनना। पर ए संजम दे च ना होवे तो खाना पीना भी तन नू रोगी कर देगा, मन नू विकारी कर देगा। ए पहनना अगर संजम दे च ना होवे, मर्यादा दे च ना होवे, तो ए भी तन नू रोगी कर देगा, मन नू विकारी कर देगा। और तन दियां सारियां लोड़ां पूरियां हो जान ते मन जद बड़े भयंकर रूप दे सामने आवे, तो हुण इस मन दी वास्तविक लोड़ की है। करीबन करीबन दुनिया दे अजोके सियाने मनुखा ने ऐसा समझ लिया, मनोरंजन मन दी लोड़ है। नाटक चेटक तरह तरह दे रंग तमाशे रंगीनिया, इस तरह दे मनोरंजन दे साधन संपन्न घरानिया दे नवे तो नवे पैदा हो रहे ने, लेकिन मन दी एक अपनी एक अवस्था है, जिस चीज नू एक दफा वेख लवे ओनू पुराना कर देंदा है, ते पुराने दी मन परिक्रमा नहीं करदा, मन अग्गे जांदा है, मन गतिमान है, इदी गति बड़ी तीक्ष्ण है, और ये रुकदा नहीं, ये लंघ जांदा है, और लंघ के हर चीज नू पुराना कर देंदा है, हर वस्तु नू पुराना कर देंदा है,
रंग पुराने हो जाते हैं, रूप पुराने हो जाते हैं, महफिलां पुरानियां हो जांदियां ने, तस्वीरां पुरानियां हो जांदियां ने, कहानियां पुरानियां हो जांदियां ने, संगीत दियां धुनां पुरानियां हो जांदियां ने, माहौल पुराना हो जांदा है। अज देखदे आं संपन्न घर जो है देशां विच कोई वध तो वध दो साल ही मकान विच रहिंदा है, तीजे साल मकान बदल देंदा है। नौबत इत्थे तक आ गई, परिवार बदलने ने, पति बदलना है, पत्नी बदलनी है, पर हुण कौन दसे ए जो मनोरंजन है ए मन दी मंग नहीं, ए ते इस तरह है जैसे रोंदे हुए बच्चे नु छणकणा दे के वक्ती तौर ते बुलाया जा सकदा है, पर उते दूध लई रो रहा है, उते मां लई रो रहा है। वक्ती तौर ते ए छणकणा दे के बुलाया जा सकदा है, परचाया जा सकदा है, लेकिन फिर भी उसने छणकणा सुट देना है। हथ मां दी तरफ पसारने ने, दुध दी मंग करनी है। हू बहु देखदे पया संपन्न घरानिया दे लोग इना छणकणिया ने सुट रहे ने, और कहने नहीं अस्थाई सुकून चाहिदा है, मसनोई नहीं, दायमी आनंद चाहिदा है, अस्थाई आनंद चाहिदा है, अस्थाई खेड़ा चाहिदा है। तो ओ जड़ा अस्थाई खेड़ा है, ओ ते जो अस्थाई है, जो टिकिया होया है, जो दायमी है, जो हमेशा है, उस तो ही प्राप्त हो सकदा है, और ओ ते केवल परमात्मा है, ओ ते केवल ईश्वर है, उस तो ही लभ सकदा है। तो मनोरंजन दे जेड़े जेड़े साधन उस दौर दे विकसित होए सन, सतगुरुदेव जी महाराज उसका जिक्र करदे ने। सुंदर घोड़ा होवे, सोने दी काठी होवे, लगाम भी जर्रीदार होवे, और कृपान तलवार गात्रे वाली पहनी होवे, तीर कोल होवन, पत्था होवे, और तरह तरह दियां खुशबुआं होवन, और इस सब कुछ ला के घोड़े ते असवार होके निकलना एक मनोरंजन सी, एक मन दी लोड़ सी, नेजेबाजी ए खेडां इस तरह दे मनोरंजन वक्ती तौर ते मन दा बहलावा सी उस दौर विच विकसित होए सन। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने नहीं, मन दी ए लोड़ नहीं, और इस लोड़ नू किवें पूरा करना है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दसदे ने घोड़े पाखर सोयने साखत बूझण तेरी वाट। हे परमात्मा, जो मैं तेरा रस्ता जान लिया है, जो मैं तेरे रस्ते नू समझ लिया है, मानो ए मैनू घोड़े की प्राप्ति हो गई है, और ऐसा घोड़ा जिदे ते जतसत दी काठी पई हुई है, सोने दी काठी पई हुई है। कहिंदे ने ए कोई लाजमी नहीं कि मनुख नू अपने घर दे ही रस्ते दा पता होवे, जो इट्टां ते पत्थरां दा बने होया मकान है और उस दे च आ गए है। अगर यही उसका घर है तो एक दिन इसे ही घर चो चार मनुख चुक के लै जांदे ने, और काडो काडो होई सतगुरु दी बाणी कहिंदी कड्डो कड्डो। तो एक गल स्पष्ट हो गई, ए ते घर घर नहीं सी, सरां सी, इत्थे ते सी प्राउणे सी मेहमान, घर ते कोई होर है। बाबा फरीद उसका जिक्र करदे ने गोर निमाणी सड करे निघरिया घर आओ, सर पर मैथे आवणा मरनो ना डरियाओ, तन दा घर शमशान है, मन दा घर भगवान है, तन दा घर कब्र है, मन दा घर खुदा है। तो बाबा फरीद कहिंदे घर ते आवाजां पिया मारदा है, ऐ तन कब्र आवाजां पिया मारदा है, कब्र तैनू बुला रही है, गोर निमाणी सड करे, गोर कब्र नू कहिंदे ने, गोर निमाणी सड करे निघरिया घर आओ, सर पर मैथे आवणा मरनो ना डरिया, मौत दा भय दूर कर, ऐ तन तेरा घर शमशान ही है, ऐ तन तेरा घर कबरी है, पर मन तेरा घर खुदा है, तेरा घर शमशान नहीं है, तेरा घर भगवान है। अपने घर दी चिंता कर, और उस घर दे रस्ते दा नहीं पता। और असी देखदे हां सारी जिंदगी
ਲੋਕ ਕਈ ਦਫਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਤੇ ਮੇ ਕਟ ਗਈ, ਕੁਛ ਗੁਨਾਹੋਂ ਮੇ ਕਟ ਗਈ, ਰੋਤੇ ਮੇ ਕਟ ਗਈ, ਕੁਛ ਆਹੋਂ ਮੇ ਕਟ ਗਈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੇ ਚਲਨੇ ਵਾਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੇ ਜਾ ਲਗੇ, ਰਾਹੇ ਬਦਲਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਰਾਹੋਂ ਮੇ ਕਟ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਔਰ ਰਸਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇ ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਸਤਿਆਂ ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਇਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਸਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਬਣੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਬੌਧ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਗੁਰੂ ਮਤ, ਸਿੱਖ ਮਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਬਣੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਰਸਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਸਤੇ, ਇਸਲਾਮ, ਈਸਾਈਅਤ, ਯਹੂਦੀ, ਪਾਰਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਆਉਂਦੀ ਏ ਵਿੰਗੇ ਟੇਡੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੋ ਵਿੰਗਾ ਟੇੜਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿੰਗਾ ਟੇੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਹੋਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਗੇ ਟੇੜੇ ਰਸਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਚ ਹੀ ਭਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਚ ਬਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਚ ਬਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਹਿੰਦੂ ਮਤ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਜੈਨ ਮਤ, ਬੌਧ ਮਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਚ ਬਣੇ ਨਿਕਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਢੰਗੀ ਚਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਟਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਭਟਕਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੋ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਰਸਤਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਭਟਕ ਗਏ। ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਕੌਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਜਹਿ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰ, ਇਕ ਔਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇ ਚੜ ਰਹੋ ਕਬੀਰ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਪਏ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਚੱਲ ਪਈ, ਤਾਰਕਿਕ ਬੰਦਾ, ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੈਸੇ ਰਸਤੇ ਚ ਔਗਟ ਘਾਟੀ ਆਈ, ਪਹਾੜ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਾੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਟਕਣ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੋ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਟਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਬਣੇ। ਇਹ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਭਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਆਲਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੇ ਚੱਲਨੇ ਵਾਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੇ ਜਾ ਲਗੇ, ਰਾਹੇ ਬਦਲਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਰਾਹੋਂ ਮੇ ਕਟ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਸਤਾ ਕਠਿਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਮਨੁੱਖ ਉਥੇ ਰਾਸਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮੈਦਾਨੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਔਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇ ਚੜ ਰਹੋ ਕਬੀਰ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਟ ਔਘਟ ਡੂੰਗਰ ਘਣਾ ਇਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ, ਰਮਈਏ ਸਿੰਘ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮੋੜਾਰ। ਔਘਟ ਘਾਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤੇ ਚੜਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚੜਾਈਆਂ ਤੇ ਦਮ ਫੁੱਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦਾ ਉਹ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੱਕੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਇਕ ਦੇ ਭਟਕਣ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਟਕਦੀ ਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਹੈ,
हे प्रभु जिड़ा मैं तेरे रस्ते नु जान ले तेरे मार्ग नु जान ले घोड़े पाखर सोयने साखत बूझण तेरी वाड मैं जान ले तेरा रस्ता की है उसदा रस्ता की है जपो ता एको नामा पावर निराफल कामा धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने तेरा नाम जपना ही तेरे राह ते चलना है तेरे मार्ग ते चलना है बाकी सब भटकना है नाम बिना जेता व्यवहार जो मृतक मिथ्या सिंगार नानक के घर केवल नाम सतगुरु देव जी महाराज कहंदे ने साडे घर विच ते केवल नाम दा ही जप है और कुछ भी नहीं और यही एक मार्ग है यही एक सही मार्ग है बाकी सारी दी सारी जो है भटकना है उदे रस्ते नु बुझना की है उदे नाम नु जपना और नाम जपन विच पूरा भरोसा होना कि परमात्मा तक पहुंचन दा यही मार्ग है यही रस्ता है तो साहिब कहंदे ने जिहड़ा तेरे रस्ते नु जान लिया तेरे वाट नु समझ लिया बस यही साडे वास्ते घोड़िया दी असवारी है घोड़े पाखर सोयने साखत बूझण तेरी वाट तरकस तीर कमान सांग तेग मन गुण धात हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे अनंत गुणा नु जो धारण कर लिया है यही साडे कोल भत्था है उस देश तीर ने यही साडे कोल कमान है और यही तेग बंद जिस देश तलवार रखी दिए उनु कहंदे ने तेग बंद गात्रा यही साडे कोल ओ गात्रा है और यही साडे कोल तलवार है केड़ा जो तेरे गुण साडे कोल ने ए जो ज्ञान आ गया है ए जो शील आ गया है ए जो संजम आ गया है ए जो प्रेम आ गया है ए जो समदृष्टि आ गई है ए जो हृदय निर्वैर हो गया है निर्भय हो गया है यही ते साडे शस्त्र ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज भी इसका बड़े सुंदर ढंग नाल जिक्र करते ने आम कहा जाता है अवतारी पुरुषां कोल कुछ ना कुछ शस्त्र रहे ने मुहम्मद साहब दे हथ विच तलवार सी अपने देश नूं देखिए श्री राम दे कोल धनुषबाण सी द्वापर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण जी कोल सुदर्शन चक्र सी किसी तारकिक ने गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं कह दिता तुसी पंजवें गुरु नानक गुरु नानक दी गद्दी दे वारस कलयुग दे अवतारी पुरुष थोड़े कोल कोई शस्त्र नहीं है तो महाराज कहण लगे है वेखो गरीबी गदा हमारी खन्ना सगल रेन छारी इस आगे टिके ना को विकारी गुरपूरे ए गल सारी साडे कोल गदा है गरीबी दी विनम्रता दी निर्माणता दी साडे कोल खंडा भी है दुधारी केड़ा जो सारिया दे चरणा दी खाक बन गए हर एक दे पैरां दे थल्ले हो गए सानू किसे दे सिर दे उपर बैठण दा शौक नहीं सानू ते कदमां विच बैठण दा शौक है सानू ते चरणा दे थल्ले बैठण दा शौक है चोटी दे धार्मिक मनुख दी चाहत आउंदी है सारिया दे कदमां दे थल्ले बैठना है चोटी दे राज नीचक दी एह चाहत आउंदी है कि सारिया दे सिर ते बैठना है राजनीति सिर ते बैठना है धर्म नीति कदमां दे जो है बैठना है तो महाराज कहंदे ने ए जो सारे गुण तेरे प्राप्त हो गए ने ए साडे कोल शस्त्र ने और गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने विनम्रता साडे कोल गदा है सारिया दे चरणा दी जो खाक बन गया ए साडे कोल खंडा है तरकस तीर कमान सांग तेग बंद गुण धात वाजा नेजा पतस्यों प्रगट करम तेरा मेरी जात साडी इज्जत साडी मान मर्यादा साडी जात साडी पात एक ही है तेरी बख्शिश ए जो तेरी रहमत हो गई है ए जो तेरी बख्शिश है तेरी बख्शिश ही साडी जात है तेरी बख्शिश ही साडी इज्जत है तेरी बख्शिश ही साडी मान मर्यादा है बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़िए तन पीड़िए मन में चले विकार होर असवारियां होर मनोरंजन दे साधन साहिब कहंदे ने हे सियाने मनुख सब खुआरियां नूं जन्म देंदे ने सब दुख संताप नूं जो है जन्म देंदे ने मन विकारी हो जांदा है तन रोगी हो जांदा है ऐसे मनोरंजना नूं एक पासे करना है ऐसियां असवारियां नूं एक पासे करना है बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़िए तन पीड़िए मन में चले विकार
घर मंदर खुशी नाम की नदर तेरी परवार हुक्म सोई तुद भावसी होर आखण बहुत अपारे नानक सच्चा पात साओ पूछ न सकरे बिचारे बाबा होर सोना खुशी खुआरे जित सुत

धन गुरु नानक देव जी महाराज श्री राग दे पावन पवित्र वाक दे चौथे रहाओ दे जो मुख गल साडे सामने रखते ने खान पीन का भी मसला हल हो जाए, पहनण का मसला भी हल हो जाए, सारे मनोरंजन दे साधन भी प्राप्त होन, लेकिन प्राणा विच इक प्यास रह जांदी है परिवार दी। मेरा परिवार भी होवे, मनुख समाजिक प्राणी है, तनहा नहीं रह सकदा, कल्ला नहीं रह सकदा। पशुआं दी कोई समाजिक जिंदगी नहीं है, और पशु अकल्ले तनहा जिंदा रह सकदे ने। और अक्सर देखा गया बेशतर पशु तनहाई दिच रह जांदे ने, और तनहाई उना लई कोई तनहाई नहीं, मन दी दुनिया ही नहीं है, सिर्फ तन दी दुनिया है, लोड़ां दी पूर्ति हो गई, मस्त होके सौ जांदे ने। मनुख मानसिक तल ते जीण वाला है और समाजिक प्राणी है, इसनू परिवार भी चाहिदा है, और परिवार विच मां बाप पत्नी तियां पुत्र भरा मित्र, और इस तरीके नाल तीन प्रणालियां समाजिक रिश्तियां दियां गिणियां गईयां ने, दादकियां दे रिश्ते, नानकियां दे रिश्ते, सौरियां दे रिश्ते। तीन रिश्ते चलदे ने इक पिता तो, इक मां तो, इक पत्नी तो। पत्नी नूं इक पासे कर दईए, सौरियां दे कोई रिश्ते नहीं। मां नूं इक पासे कर दईए, नानिहाल बचदा ही नहीं। पिता नूं इक पासे कर दईए, दादकियां दी प्रणाली चलदी ही नहीं। समाजिक रिश्तियां दियां इह तिन शाखावां ने, दादके, नानके, सौरे। तो चूंकि मनुख समाजिक प्राणी है, इनू दादकियां दे रिश्ते चाहिदे ने, इनू नानकियां दे रिश्ते चाहिदे ने, इनू सौरियां दे रिश्ते चाहिदे ने। मनुख दे कोल बहुत सारे साजो समान दे माण दे नाल नाल रिश्तियां दे भी माण हुंदा है, रिश्तेदारां दा भी माण हुंदा है, संबंधियां दा भी माण हुंदा है। इह गल वखरी है कि इन्हां रिश्तियां विचों किहड़ा व्यक्ति उस नूं अधिक प्यारा है, ज्यादा प्यारा है, पर फिर भी इन्हां तीन रिश्तियां दी प्रणालियां दी अपनी प्रधानता मनुखी जगत विच बनी आई है और है। नानके, दादके, सौरे। सिख जगत दे महान दार्शनिक संत भाई साहब भाई गुरदास जी वो कहने हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं तेरे रिश्ते तो सारे रिश्ते कुर्बान करदा, सदके करदा। बड़े सोहने ढंग नाल उन्होंने एक कवित विच इन्हां रिश्तियां दी गिणती कीती है और अपना मनोवेग अपना मनोभाव प्रदर्शित कीता है। नहीं ददसार पिता पितामह पर पितामह सजन कुटुंब सुत बांधव ना भराता है। पिता पिता दा पिता दादा, फिर उसका पिता परदादा, फिर उसका पिता लकड़ दादा। इस तरीके नाल ए दादके घरानिया दे रिश्ते भरा ने पुत्र ने, ए सारे दा सारा दादका कहलांदा है। आप कहने नहीं ददसार पिता पितामा पर पितामा सजन कुटुंब सुत बांधव ना भराता है। नहीं ननसार माता पर माता वृद्ध माता मामी मामू मासी मौसा विविध विख्याता है। नानकियां दे सारे रिश्ते चलदे ने मां तो, मां मां दी मां नानी, फिर उसकी मां प्रणानी, मामे मामिया मासी इत्यादक मासड़ इत्यादक, ये सारे रिश्ते मां करके ने। भाई जी कहंदे ने नहीं ननसार माता पर माता वृद्ध माता मामी मामू मासी मौसा विविध विख्याता है। नहीं ससुरार सास ससुर सारो ओ सारी नहीं ब्रितीसर जाचक ओ ना दाता है। पत्नी तो जड़े रिश्ते चलते ने,
साला है, साली है, सस है, सौरा है, ये सारे पत्नी तो चल देने। मैं फिर अर्ज करा, पिता नु एक पासे करिए, दादकियां दी प्रणाली खत्म, मां नहीं तो नानकियां दा पसारा खत्म, पत्नी एक पासे तो कौन साला कौन साली, कौन सस ते कौन सौरा, ये रिश्तियां दी प्रणाली टूट जांदी है। खड़ी है सौरियां दी प्रणाली पत्नी ते, खड़िया है दादकियां दा संसार पिता ते, नानकियां दी दुनिया मां ते। भाई साहब भाई गुरदास जी चौथी पंक्ति देच अपना मनोभाव इंज प्रदर्शित कर देने, नहीं ससुरार सास सुसर सारो ओ सारी, नहीं ब्रितीसर जाचक ओ न दाता है, असन बसन धन धाम काहू में न देखियो, जैसे गुरसिख साध संगत को नाता है। गुरु दी संगत च बैठ के सुरत नू जड़ा प्रभु नाल जोड़ लेना है, ये जो रिश्ता है, ये जो नाता है, भाई साहब कहते दुनिया च कोई ऐसा नाता नहीं, पर इस दी तह दे च थोड़ा ते जो है जाना पेगा। आखिर ए संबंध परिपूर्ण परमात्मा दे बनाए हुए ने। तिया पूत सब हर के किए, सबना को संबंध कर दिए, फिर मात पिता सुत बंधप भाई, नानक हो आपार ब्रह्म सहाई। यतीन कह देने असी उसनों, जिसने मां नहीं जिस दिए पिता नहीं, यतीम है यतीम है, पति नहीं तो उस पत्नी नु बेवा कह दिता जाता है, और पत्नी नहीं तो उसका पति होना खत्म हो जाता है, इंसान रह जाता है, मनुख रह जाता है, हुण ये पति नहीं है, पत्नी करके ही पति सी। ये रिश्ते एक खास वजूद नु, इस खास अवस्था नू, एक खास मनोवेग नू जन्म दे देना है। और बच्चा ही नहीं ते मां किथे, कदी बगौर मुताला करिए, सिर्फ बच्चे दा जन्म नहीं होया, मां दा भी जन्म होया है, सिर्फ बच्चे दा जन्म नहीं होया, प्यो दा भी जन्म होया है। कहिंदे आ बच्चा पैदा होया, बच्चा पैदा होया है, पर अधूरी गल करदे आ, नहीं कहना चाहिदा है मां दा जन्म होया, मां दा जन्म होया, अधूरी गल करदे आ, लड़का पैदा होया, लड़का पैदा होया, पर कह देना चाहिदा पिता पैदा।